0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी व घरगणना म्हणजेच आपल्या घराची गणना होईल. या आपल्या भागीदारीने याला यशस्वी करूया आणि विकसित भारत 2047 च्या दिशेने अजून एक पाऊल उचलूया.
1: आपली पसंत आमची आवड, मनस्वी संगीत, शेती, महिला, आरोग्य, विशेष कार्यक्रमांचा नजराणा, आपला रेडिओ तेरणा. ऐकत रहा, आनंदी रहा. रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज. क्रिस्टल क्लिअर आवाजासाठी डाउनलोड करा आमचा ऍप प्ले स्टोर वरून. टाइप करा रेडिओ तेरणा 90.4. रेडिओ तेरणा आता रेडिओ गार्डन वरही उपलब्ध, तसेच radio.coeusmanabad.ac.in वेबसाइट टाकूनही आपण रेडिओ तेरणा ऐकू शकता. ऐकत रहा रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज. ऐकत रहा, आनंदी रहा.
2: नमस्कार मित्रांनो, आपण ऐकत आहात रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज. मित्रांनो, तेरणेची प्रेरणा या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत आपण जाणून घेत असतो अशा सर्व विद्यार्थ्यांचा जीवन प्रवास ज्यांनी तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून आपलं शिक्षण पूर्ण केलेलं असतं आणि आयुष्यात अशा पद्धतीने एका यशाच्या मार्गावर असतात की त्यांचा यशाचा हा प्रवास जो असतो तो आपल्यासाठी प्रेरणादायक असतो. याच पद्धतीनं आज आपण रेडिओ तेरणाच्या स्टुडिओमध्ये निमंत्रित केलेलं आहे आसमा युन्नुस सय्यद यांना. त्या मूळता राहणाऱ्या उजनी तालुका औसा जिल्हा लातूर येथील आहेत आणि 2020 त्यांनी तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून MECSE पासआउट केलेला आहे. त्याच्या अगोदरच 2019 तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयातूनच त्यांनी BECSE पूर्ण केलेलं आहे. त्याच्या अगोदरचं शिक्षण आसमा यांचं फिनिक्स पॉलिटेक्निक लोदगा जिल्हा लातूर येथून त्यांचं पॉलिटेक्निक पण झालेलं आहे. अशा पद्धतीनं इंजिनिअरिंगच्या क्षेत्रामध्ये पूर्णपणे करिअर करत असताना आता त्या सध्या सिद्धेश्वर इंजिनिअरिंग कॉलेज सोलापूर इथे असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून कार्यरत आहेत. तेव्हा आज त्यांच्या जीवनाचा आपण हा प्रवास जाणून घेणार आहोत. आसमा, मी आपलं स्वागत करतो रेडिओ तेरणाच्या स्टुडिओमध्ये.
3: थँक्यू.
2: तो अगर आप चाहिए तो आप हिंदी में भी कम्फर्टेबल है तो हिंदी में बात कर सकते हो, मराठी में कर सकते हो, सभी लैंग्वेज यहाँ पे चल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. फिर भी मैं आसमा जी आपसे पूछना चाहूंगा कि 2020 आप यहाँ से पास आउट हो गए, यानी कोरोना का उस टाइम पीरियड चल रहा था, तो 2020 के बाद आप पहली बार यहाँ पे तेरणा इंजीनियर कॉलेज के कैंपस में आए हो?
3: नहीं, मतलब उसके पहले भी आए थे, ऐसे प्रोसेस रहते ना उसके और
2: टीसी के इसके लिए. अच्छा, इसके पहले कब आए थे फिर तेरणा इंजीनियर कॉलेज पे?
3: ये सबमिशन और एमई का,
2: एमई के सबमिशन के वक्त आ गए थे, यानी 2020 पास आउट हो गए थे. हाँ, ना हाँ. तो 2020 आज लगभग 2026 चल रहा है, तो ये 6 हाँ. सालों में कभी आना हो गया था?
3: नहीं, कभी नहीं.
2: जब भी आए थे तो 2020 ही थे.
3: हाँ.
2: अच्छा, तो 2019 आपने बी कंप्लीट किया था पॉलिटेक्निक. हाँ. के बाद यानी सेकंड ईयर में आपने एडमिशन लिया होगा.
3: हाँ.
2: तो लगभग मेरे ख्याल से 16 में एडमिशन लिया था.
3: हाँ.
2: 17 में.
3: हाँ.
2: कब लिया था एडमिशन?
3: 2014-15
2: में. तो
3: 2017 पास आउट है. 2014 में यहाँ पे बी को एडमिशन लिए था और 15-16-17 को पास आउट है.
2: अच्छा.
3: और ये इसकी वजह से कोरोना की वजह से ना थोड़ा वो पेंडिंग में थे सब्जेक्ट, ये प्रोजेक्ट.
2: अच्छा.
3: तो इसलिए 2019 पास आउट 20 हुआ ऐसे.
2: अच्छा अच्छा अच्छा.
3: तो बी 2017 में वैसे.
2: अच्छा, बी 2017 में हो गई है.
3: हाँ.
2: अच्छा, तो आपने कहा था पहले 2019, लेकिन 2017 में बीई कंप्लीट. हाँ. हो गई है और 2020 में एमई कंप्लीट हो गई.
3: हाँ.
2: है. अच्छा अच्छा. तो आपने जैसे बोला कि 2017 यानी लगभग उसके भी पहले यानी 3 साल पहले यानी 2013 आपने एडमिशन लिया होगा, 2014 में. अच्छा, तो ये आपने कैसे सोच लिया था कि आपको तेरणा इंजीनियरिंग कॉलेज में ही पढ़ने को आना है, क्योंकि आपका पहले पॉलिटेक्निक भी हो गया था ऐसे कहा?
3: मतलब ये रेप्यूटेड कॉलेज है ना, और ऐसे नजदीक भी है, और एज मतलब रेसिडेंशियल भी रहने के लिए अच्छा है, कैंपस है अच्छा, तो सब ऑल तरीके से परफेक्ट था, तो इसलिए यहाँ पे एडमिशन ली. और यहाँ से ना तो पेरेंट्स भी इजीली मिलने आ सकते थे ना, मतलब हमारे प्लेस से मिलने के लिए भी कुछ इमरजेंसी हो गई तो ये सब तरीके से अच्छा था कॉलेज.
2: अच्छा,
3: तेरणा कॉलेज.
2: अच्छा, तो आसमा जी जैसे अभी तेरणा इंजीनियरिंग कॉलेज को आपने सेलेक्ट किया, लेकिन उसके पहले आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ था.
3: हाँ.
2: तो आफ्टर टेंथ आपने पॉलिटेक्निक ज्वाइन किया, तो ऐसे बचपन से ही दिमाग में था कुछ इंजीनियरिंग करना है या कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ था?
3: हाँ, तो बचपन से ऐसा लगता था कि इंजीनियर बनना है बल्कि।
2: क्यों ऐसा क्यों लगता था, क्यों आपका कोई इंस्पिरेशन था, आपके फैमिली में से कोई था, ऐसा क्या था?
3: तो फैमिली में से तो नहीं था, लेकिन ऐसा ऐसे जो हम जब कुछ आर्टिकल और देखते ना तो वहाँ पे ऐसे इंजीनियरिंग के इंजीनियर्स के फोटो और रहते थे ना, तो लगता था हाँ ऐसे बनना है। और
2: अच्छा अच्छा, जैसे कि मैं आपको थोड़ा जानता हूँ, आप उजनी से हो, तो जैसे हमारी पहले बातचीत भी हो गई थी, आपका टेंथ तक की जो पढ़ाई है वो सब उजनी में हो गई थी। उजनी यानी उस तरीके से देखा जाए तो एक छोटा गांव है। छोटा गांव यानी मार्केट वहाँ का बढ़िया है लेकिन फिर भी छोटा गाँव है। तो टेंथ तक की वहाँ पे पढ़ाई बोलो या फिर जैसे कि वहाँ पे आपके फैमिली हो, तो आपको कैसे मतलब कैसे सोच लिया उन्होंने कि एक लड़की होते हुए भी आपको पढ़ाना है, आगे लेके जाना है, तो कैसा रहता था माहौल?
3: मतलब मेरे फादर जो है ना एजुकेटेड थे ऑलरेडी और वो बिजनेसमैन थे, तो उनको ऐसा लगता था कि ऐसे लड़कियों ने भी उनके ऐसे पैर पे खड़े होना है, उनको लाइफ में कब प्रॉब्लम आ गई तो उनको ऐसा एजुकेशन उनका सपोर्ट बनना चाहिए। तो इसलिए मतलब उनको 5 लड़कियां थी, फिर भी उन्होंने हर एक को ऐसा बेस्ट क्वालिटी का UPG तक का एजुकेशन दिया है। तो उनको ऐसा लगता था कि ऐसे इनको प्रॉब्लम आई तो एजुकेशन काम को आना इनके ऐसे।
2: अच्छा, तो आप बड़ी हो कैसे?
3: नहीं, मैं 3 नंबर हूँ।
2: तो आपके 2 बड़े बहने क्या करते हैं?
3: ओ, एक मतलब वो ऐसे उर्दू में टीचर है और एक दूसरी BA हुए से है ऐसे वो। अच्छा। और मैं MA हुए से मेरी।
2: अच्छा, और आपके साथ आज आपकी बहन भी आ गई हो।
3: हाँ, आयशा यूनुस सैयद है और वो भी ऐसे नवोदय विद्यालय में एज अ PGT कंप्यूटर टीचर जॉब वर्क करते हैं।
2: अच्छा अच्छा, तो इतनी सारी पढ़ाई वो भी लड़कियों की, और खास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी होते हुए भी पढ़ाई का इतना ज्यादा तवज्जो देना, उनको ज्यादा से ज्यादा इनकरेज करना, तो आपको बढ़िया लगता है ये सब?
3: हाँ,
2: वो भी उजनी जैसे गांव से निकल के आना।
3: हाँ, नहीं, हमारा गांव भी मतलब बहुत अच्छा है ऐसे। हाँ। लड़कियों के बारे में ऐसे ब्रॉड माइंडेड है, मतलब ऐसे लड़कियां पढ़ना आगे बढ़ना ऐसे बहुत अच्छी है हमारे गाँव की।
2: तो ये 10th के बाद आपका कैसा डिसाइड हो गया कि आपको पॉलिटेक्निक करना है? 11th 12th करके भी आप आगे भी इंजीनियरिंग को आ सकती थी या मेडिकल को भी जा सकती, तो ऐसा क्या हो गया कि आपको पॉलिटेक्निक ही ज्वाइन करने के लिए सोच लिया?
3: मतलब ऐसे हमारे कजन थे तो दूर के थे, पर ऐसे वो पॉलिटेक्निक में थे पुरन मल्ला होटी में, तो फिर ऐसे उनको ऐसे वो बोलते थे कि हाँ यहाँ पे ये भी एक ब्रांच है, यहाँ से डायरेक्ट इंजीनियरिंग को जाने आता हो, तो उससे वे बढ़ जाते हैं कंप्यूटर साइंस से, तो इसलिए उन्होंने ऐसा उन्होंने बोला प्रोसेस सब ऐसा ऐसा होता है, तो फिर वो उसी से
2: पॉलिटेक्निक ज्वाइन कर लिया आपने। अच्छा, तो ये पॉलिटेक्निक में कंप्यूटर साइंस ही आपका सब्जेक्ट था?
3: हाँ।
2: अच्छा, तो आपके ये पॉलिटेक्निक के कैसे साल रहे, आपने कंप्यूटर की पढ़ाई कैसे की, क्योंकि उजनी से 10th तक तो पढ़ाई की हुई थी, उसके बाद पॉलिटेक्निक में जाने के बाद आपने कैसे सब वहाँ पे स्टडी बोलो या कैसे आपकी मतलब एकेडमिक कैसे रहा, ये बोलिए आपका पॉलिटेक्निक हो या यहाँ का इंजीनियरिंग का हो, आप पढ़ाई कैसे करती थी, क्या क्या करती?
3: मतलब ऐसे मैं जब कॉलेज में गई ना पॉलिटेक्निक के, तो फिर एक्चुअली मुझे सिविल ब्रांच लेनी थी।
2: अच्छा।
3: लेकिन हमारे पापा ऐसे बोलते थे कि नहीं, कंप्यूटर को इन फ्यूचर बहुत स्कोप आएगा और लड़कियों के लिए कंप्यूटर अच्छा है, तो इसलिए उन्होंने कंप्यूटर में डाला।
2: अच्छा।
3: था,
2: लेकिन सिविल क्यों सोचा था आपने?
3: तो मेरा मैथ बहुत परफेक्ट था, तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि कंस्ट्रक्शन अच्छा है आपके लिए।
2: अच्छा।
3: तो फिर बाद में से मैंने सोचा तो भी था कि कंप्यूटर फर्स्ट ईयर पास आउट करके सिविल को नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट इसमें चेंज करेंगे।
2: हाँ।
3: लेकिन बाद में से कंप्यूटर में मतलब बहुत अच्छी है कंप्यूटर ब्रांच एक्चुअली उसमें के सब्जेक्ट, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यही ठीक है, तो यही कंटिन्यू करते हैं।
2: अच्छा अच्छा, तो ये कंप्यूटर साइंस आपका पॉलिटेक्निक कंप्लीट जैसे 3 साल हो गए, तो 3 साल में आप लगातार पास आउट होते रहे या?
3: हाँ, मैं टॉपर थी हमारी कॉलेज।
2: अरे वाह, क्या बात है। हाँ।
3: और 10th में भी मतलब 2nd नंबर आया था गणेश विद्यालय से।
2: अच्छा।
3: और इसमें भी कॉलेज में भी 1 नंबर ही थी मैं।
2: अच्छा, तो जैसे आपने तेरना इंजीनियरिंग कॉलेज को एडमिशन लिया, जैसे तो 10th तक टॉपर, पॉलिटेक्निक में भी टॉपर थी, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में आने के बाद आपको फिर कैसे कैसे और आगे?
3: हाँ, यहाँ पे भी मतलब ए भी कॉलेज बहुत अच्छा था हमारा तेरना कॉलेज, तब यहाँ पे वहाँ पे ऐसे जब ऐसा नहीं है तब ऐसे छोटे रहते थे कि नहीं अपने को 1 नंबर आना है, पर जब यहाँ पे आए ना तो ऐसा लगा कि नहीं थोड़ी लाइफ भी देखनी है, थोड़ा रिलैक्स भी रखना है।
2: अच्छा,
3: पढ़ाई
2: अच्छा।
3: करनी है, सब्जेक्ट क्लियर निकालने हैं।
2: हाँ।
3: तो मतलब फर्स्ट मतलब डिस्टिंक्शन आया बस तो उतना मेहनत नहीं करनी टॉपर के लिए, इसलिए थोड़ा लाइफ को ऐसा थोड़ा ऐसा फ्रेंड्स बनाए, फिर ऐसे थोड़ा उनके साथ ऐसा ये कर।
2: डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लिया था ना, तो फिर कैसे सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर कैसा रहा यहाँ?
3: हाँ मतलब बहुत अच्छा रहा, मतलब वो अभी भी मेमोरी सामने है, बहुत मतलब कॉलेज में बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिल गए हमको।
2: यहाँ पे कॉलेज में आने के बाद पढ़ाई कैसे किया करते थे ये बोलिए, ताकि कैसे कि आप फ्रेंडशिप भी करते थे, चिल भी किया करते थे, लेकिन फिर भी यहाँ की पढ़ाई, दिन भर की पढ़ाई बोलो, लेक्चर्स अटेंड करना, क्योंकि लगभग आपने कहा था कि 2013-14 की बात है ये, सेकंड ईयर डायरेक्ट आपने एडमिशन लिया होगा, तो कैसे चलती थी पढ़ाई उस वक्त?
3: मतलब ऐसे क्या जो ऐसे टीचर पढ़ाते थे अच्छा, तो फिर ऐसे बुक्स लाइब्रेरी के हम रेफरेंस बुक और ज़्यादा यूज करते थे, मतलब टीचर के नोट्स प्लस लाइब्रेरी के बुक्स और ऐसे।
2: तर मित्रांनो आपण जी चर्चा करत आहोत ते आसमा युनुस सय्यद यांच्याशी, त्या 2020 यमी CSE म्हणजे कॉम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग मधून पासआउट आहेत, 2017 त्यांनी BE पासआउट केलेला आहे, आणि त्याच्या अगोदर त्यांनी पॉलिटेक्निक पण केलेला आहे, आणि सध्या सिद्धेश्वर इंजिनिअरिंग कॉलेज सोलापूर इथे असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून आहेत। तो आसमा जी आपको ये पूछने का मतलब ये था कि आज आप लेक्चरर असिस्टंट प्रोफेसर है, तो उसके हिसाब से उसको रिलेट करेगा ये मेरा क्वेश्चन कि आप उस वक्त कैसे पढ़ाई किया करती थी, क्योंकि आपने MA भी बाद में साथ में कंप्लीट किया, तो जैसे कहा कि आपने लाइब्रेरी में जाके बैठते थे, बुक्स रेफर करते थे, तो क्या आप इंटरनेट का और जो आजकल का जो चला है वैसा कुछ उस टाइम यूज नहीं किया करती थी?
3: हाँ नहीं, उतना नहीं था इंटरनेट।
2: अच्छा अच्छा, तो जैसे आप देखो थोड़ा सा हम अगर मर्ज करेंगे ये क्वेश्चन को आज के क्वेश्चन में, तो आज आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो OB सोलापुर जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो आज के लड़के देखते होंगे, लड़कियां देखते होंगे कि जो पढ़ाई करते टाइम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट का या ऑनलाइन जितने भी सोर्सेस है उसका यूज़ करती है, शायद लेक्चर भी उतना अटेंड करते हो या ना करते हो मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसको देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि आप जब पढ़ाई किया करते थे 2014-15-16 तक, तो बुक्स रेफर करना, लाइब्रेरी में जाके बैठना, लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा सुनना, वो ज़्यादा आसान था या आपका ज़्यादा आसान है जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो?
3: मतलब मुझे ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा आसान हुए हो गए से, मतलब हम ऐसे जब अब कोई टॉपिक रहता था तो हम सोचते थे कि ऐसा इसका रियल में यूज़ क्या किधर होता है रियल में यूज़, फिर ये बनाने के क्यों आइडिया आया ये बनाने का और ऐसे प्रोग्रामिंग में, और तो फिर कैसे बना ऐसे वो जो सवाल के रहते थे ना, तो वो बुक्स में सिर्फ ऐसे रेफरेंस बुक में ऐसा कैसे बनाओ ऐसे पूरा रीड करना पड़ता था, पूरी ब्रीफ रहता था, और अभी ना ऐसे ये बहुत अच्छा है इंटरनेट का, तो शॉर्टली हमारे को सब ऐसे 4GPT है तो ये है, तो वो आसान तरीके से बोलते हैं अपने को, हमारे को 2-3 बुक लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये किस में वो बोलते हैं कि कैसे आया क्यों आया क्या यूज है ऐसे, पर ऐसे बुक्स तो ऑलवेज ग्रेट है, तो उतना ज्यादा नॉलेज
2: नहीं है, क्योंकि आप डिफरेंशिएट आप क्यों कर सकते हो, क्योंकि हालांकि दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ता है उसको ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हो जाती है, तो आपने किताबें पढ़ के जितना भी नॉलेज हासिल किया अभी जो देखा जाए तो ये इंटरनेट के जरिए मिलता है, तो काफ़ी इजी मिल रहा है, इसलिए जो दिमाग जो चलाना है उतना चल सकता है नहीं चल सकता है कैसे लगता है?
3: हाँ मतलब नहीं चल सकता ऐसा लगता है, क्योंकि तब आप जब अपन मेहनत
2: इजीली मिल रहा है,
3: हाँ इजीली मिल रहा है, तो तब हमारे को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, मतलब ऐसे किताब सर्च करो ऑथर के नाम से, फिर उसमें पॉइंट सर्च करो, टॉपिक सर्च करो, ऐसे एक एक सब्जेक्ट के ऐसे 2-5-5-6-6 ऐसे बुक्स रहते थे, अभी बहुत आसान है मतलब इजीली मिलता है। अब एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर हम जब भी ऐसा हमारे को भी पहले पढ़ना पड़ता है ना स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, तो जब हम ऐसे शॉर्ट में हम देखना चाहते हैं ना तो हमारे को भी बहुत इजी जाता हो, तो एज मतलब अब भी बहुत आसान हुए
2: वैसे है। अच्छा, तो जैसे ये अगर हम इसको ही अगर थोड़ा सा और आगे लेके जाए तो इससे करियर बनाने में उसमें आसानी हो जाती है, डिस्ट्रक्शन ज्यादा बढ़ जाता है? जैसे कि ठीक है अगर आसान हो जाता है पढ़ाई के हिसाब से, अगर कोई ऑनलाइन सर्च कर रहा है तो उसको जल्दी जल्दी आसानी से मिल रहा है तो हो सकता है कि वो ग्रोथ करे, लेकिन उसके साथ डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो आप कैसे देखते हो बच्चों के, जैसे कि आप भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हो तो वहां पे कैसे माहौल रहता है, कैसा है, बच्चों को आप कैसे समझाते हो, क्योंकि आप खुद यहाँ तेरना इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ी है, यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि अभी अलग अलग ब्रांचेस में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इसको आगे लेके जाना चाहिए, जो सोशल मीडिया की वजह से डिस्ट्रक्शन होता है या कैसे होता है?
3: हाँ, तो फिर जब हम ऐसे अभी इंटरनेट पे हम कैसे पढ़ाई करते हैं एज मतलब पेपर के लिए ही करते हैं, पर जब हम ऐसे बुक्स और सब रीड करते हैं तो थोड़ा बहुत हमारे को बाद में से भी याद आता है। जब हम लास्ट ईयर में जाते तो हम सेकंड ईयर में क्या पढ़े सो वो भी थोड़ा रिमाइंड होता है, लेकिन अभी क्या होता है हम उतना उतना करते और जाते तो फिर वो उसके लेवल भी जो रहती है ना मतलब स्टोर करने की तो वो भी वो कम होती क्या कैपेसिटी मतलब।
2: अच्छा,
3: ऐसे भूलते भी जितने जल्दी याद आता उतने जल्दी भूल भी जाते ऐसे मतलब हमारे को ये उतना ज्यादा याद नहीं रहता कि हमने क्या पढ़ रहे थे क्यों पढ़े थे ऐसे।
2: अच्छा, तो जैसे कि आप खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हो, लेकिन जहां तक मैं आपकी जर्नी देख रहा हूं कि पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस में हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, बाद में एमए की डिग्री भी हो गई, मास्टर डिग्री भी हो गई, इतना सब कुछ कंप्यूटर साइंस में होते हुए भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ, आपको तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी।
3: एक्चुअली मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ था यही तेरना कॉलेज में, बेंगलोर के मैसूर की कंपनी में।
2: अच्छा,
3: हाँ, सीडैक कंपनी थी।
2: हाँ,
3: तो फिर उसमें हुआ था, लेकिन वो मेरे ऐसे पप्पा ने बोले कि मतलब ऐसे उतना दूर मैसूर को जाना मुझे ऐसे थोड़ा दिल घबरा रहा है।
2: अच्छा।
3: तो बोले ऐसे कि मुझे नहीं थोड़ा ये लग रहा, तो तुम आगे जो बोलते मैं वो करता, लेकिन मुझे तो मुझे यहाँ पे घबराहट हो रही। तो फिर मैंने बोली कि हाँ हाँ नहीं

0: इन्फोसिस में है सभी अभी,
1: कोई अब्रॉड भी होगा
0: शायद, वो उतना नहीं, पर मेरे जो कांटेक्ट में है ना मेरे क्लासमेट, तो वो यहाँ आपने यहाँ पे है और अच्छे इसमें है वो पैकेज में, और सक्सेसफुल हैं सब।
1: अच्छा, तो आपको आपको ऐसा नहीं रिग्रेट लगता कि यार ऐसा कुछ हो सकता था लाइफ में?
0: हाँ, मुझे अब भी सर, मतलब जब मैं टीसी निकालने आई थी लिविंग सर्टिफिकेट, तो सर उनको याद था कि मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ था, तो सर बोल रहे थे अभी कि हाँ मैडम ना, मतलब बेटा कि तूने वो ज्वाइन किया होता तो अभी तुम्हारे को बहुत ज़्यादा पैकेज रहता था, पप्पा की वजह से तुमने ज्वाइन नहीं किया। हाँ। मतलब उनको याद है अभी।
1: हाँ।
0: तो लगता है मतलब वहाँ पे गए होते तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुई होती लाइफ में।
1: अच्छा अच्छा, तो ठीक है, आज भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो जो आपके लाइफ में होगा समझो, जैसे कि आप आपके पिताजी ने कहा कि नहीं मतलब इतने दूर नहीं भेजना है, होता है होम सिकनेस होता है लड़की बोले तो, किसी भी पिताजी को लगता है कि सिक्योरिटी या सब चीज के लिए, लेकिन फिर भी आप उस वक्त उनको कन्विंस नहीं कर पाई कि नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ, यहाँ तक पढ़ चुके हूँ।
0: नहीं मतलब उतना ये नहीं हुआ, फिर हम भी ऐसे लोकल इस्ते आते थे ना, तो फिर ऐसे उस टाइम में थोड़ा ऐसे ये ऐसे बड़े बड़े सिटी हमको भी थोड़ा ये लगता था ना, घबराहट होती थी वहाँ पे जाने का, तो फिर वो ऐसे ऐसा लगता था हाँ ये भी सही बोल रहे हैं ऐसा लगता था फिर।
1: अच्छा अच्छा, तो आसमा जी अभी अभी जो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ये जॉब आपको कब लग गया फिर?
0: ये जॉब 2024 में,
1: 2024 में लग गया। अच्छा, तो तब तक आपने क्या किया फिर?
0: जैसे कि आपने, मैं ना, हाँ मैं भी नवोदय विद्यालय में FCSC करके थी।
1: अच्छा, हाँ
0: जालना स्कूल, जालना का नवोदय है ना।
1: हाँ, हाँ,
0: तो वहाँ पे मैं भी कंप्यूटर टीचर बोल के थी।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये अभी 2024 तक बीच में आपने कहा आपकी शादी भी हो गई।
0: हाँ,
1: तो वो कैसे हो गए वो भी बोलिए।
0: हाँ मतलब मेरे पप्पा ना थे ऐसे कोरोना में वो एक्सपायर हो गए थे, तो फिर बाद में से ऐसे उनके जाने के बाद ऐसे तब तक ऐसे शादी नहीं हो गई थी, फिर उनके जाने के बाद तो फिर तब शादी हो गई, फिर वहाँ पे जाने के बाद फिर वहाँ के कॉलेज में और ऐसे पढ़ाई किया है इतना अच्छा, तो पप्पा ने पढ़ाई से कुछ तो करना है बोल के फिर वहाँ के कॉलेज में इंटरव्यू दिए, क्या ये एड निकली थी, सो फिर सिलेक्शन हुआ इंटरव्यू में वहाँ।
1: अच्छा,
0: के
1: तो आपके जो हस्बैंड है ससुराल वाले है उन्होंने सब आपको सपोर्ट किया?
0: हाँ बहुत अच्छे हैं वो सब, ये ऑल एजुकेटेड हैं वो लोग।
1: अच्छा, तो इसके वजह से आपको सपोर्ट किया, तो ठीक है समझो। अभी आपकी जर्नी जहाँ तक आप देखा जाए 2026 चल रहा है, आपकी पढ़ाई होके भी लगभग अब 10 साल हो रहे हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक और सब कुछ देखा जाए तो इंजीनियरिंग कंप्लीट होके भी, तो आप क्या सोच रहे हो कि आगे ऐसे और कैसे बढ़ना है, क्या करना है आगे चल के?
0: मतलब ऐसे कुछ तो ऐसा इतने टेक्नोलॉजी यूज ऐसे है तो फिर हमारे को भी नॉलेज है, तो ऐसे कुछ तो अभी जॉब के ऐसा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो हम और भी तो उसके साथ साथ तो कुछ भी ऐसा इन्वेंट भी कर सकते हैं इतना, मतलब आजकल तो सभी इजीली मिलता है, तो ऐसे कुछ तो अलग भी कर सकते हैं, तो ऐसा। अच्छा।
1: तो जैसे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बोल के आप खुश हो, या आजकल तो वर्क फ्रॉम होम का भी बहुत मतलब ये जमाना ही चल रहा है, तो आपने ऐसा कभी ट्राई नहीं किया कि वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो? आपको जितना इतना नॉलेज मिला हुआ है कंप्यूटर साइंस के अंदर तो आप उसको आगे बढ़ा सकते हो, ऐसा कुछ मतलब सोचा नहीं आपने?
0: हाँ नहीं, मतलब वो फर्स्ट जॉब मैंने एज अ टीचर बोल के की थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि टीचर बोल के करना थोड़ा ये है,
1: इजी है। अच्छा,
0: मतलब हम अपने फैमिली के साथ भी रह सकते हैं।
1: अच्छा, और ज्यादा बर्डन
0: फैमिली को भी ऐसा टाइम दे सकते हैं और खुद को खुद भी ऐसा आगे बढ़ सकते हैं। तो फैमिली भी साथ होना जरूरी है आजकल के जमाने में, तो कब क्या होगा पता नहीं।
1: अच्छा अच्छा, तर मित्रों अपन जी चर्चा करत आहोत आसमा युनूस सय्यद यांच्याशी, त्या 2020 MA CSE मधून पासआउट आहेत, 2019 BE कंप्लीट केलंय, त्याच्या अगोदर पॉलिटेक्निक केलंय, सध्या सोलापूर येथील इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये ते असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून कार्यरत आहेत। तो आसमा जी ये बात और एक मुझे पूछनी थी कि जैसे ठीक है आप असिस्टंट प्रोफेसर हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो ये कितना ईजी होता है? आमतौर पर मैं क्या पूछता हूँ हमेशा, कोई लड़की अगर यहाँ पे आ रही उसका इंजीनियरिंग हो चुका है, तो एक लड़की बोल के, क्योंकि यहाँ का जो हम जैसे देखते हैं कि धाराशिव हो, लातूर हो, वैसे भी देखा जाए तो मराठवाड़ा का रीजन वैसे ऐसा कहते हैं कि मागास लेला है वो, तो ऐसा ऐसा कितना लड़कियों को कितना आसान होता है पढ़ना और नहीं पढ़ना ऐसा लगता है। ठीक है, आपके पिताजी पढ़े लिखे थे, उन्होंने आपको इनकरेज किया पढ़ने के लिए, आपके पूरे फैमिली को किया।

0: एनकरेज, तो कितना आसान और कितना हार्ड है कि भाई इसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? जैसे आप उजनी में भी 10th तक पढ़ाई की हो, बाकी तो आपको क्या लगता है? जैसे आपके बहुत सारे लड़कियां फ्रेंड होंगे तो आप शायद डिस्कशन होता होगा कि बहुत हार्ड है या इजी है, कैसा लगता है?
1: नहीं मतलब जब पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं तो तब इजी होता है।
0: अच्छा, और पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते तो?
1: हाँ, तो फिर तो थोड़ा हार्ड होता है मतलब।
0: अच्छा, और जैसे कि ये पूछना कितना लाजमी है मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कितना इजी है और कितना हार्ड है?
1: हाँ नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी भी में भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि नहीं अपनी बेटी पढ़नी चाहिए, मतलब एज अ ग्रेजुएशन तो भी होना चाहिए अपने ऐसे मतलब लाइफ में, ऐसा जॉब के लिए पढ़ाई नहीं तो फिर हम समझदार भी बहुत होते हैं पढ़ाई से, मतलब हम और कैसे लगता है कि जब कोई आर्गुमेंट और हो रही होती तो हम बोलते हैं हाँ जान दो, मतलब ऐसे ये नहीं होना चाहिए कलेश और ऐसे, थोड़ा हम ही कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो पढ़ाई सिर्फ जॉब के लिए काम नहीं आती, तो जब हमारे मेंटल को मेंटालिटी के लिए भी बहुत काम आती है, मतलब हम ऐसे थोड़ा सा ऐसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ये होता है।
0: जैसे कि आपने आसमा कहा था कि पॉलिटेक्निक करने के बाद आप यहाँ पे इंजीनियरिंग को आ गई थी, तो आपने बोला कि यार लाइफ भी देखनी चाहिए, फ्रेंड्स भी करने चाहिए, थोड़ा सा मतलब मौज मजा भी करनी चाहिए, ऐसा आपने कहा था। तो उस टाइम तो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का, मोबाइल का उतना ज़्यादा नहीं था 2013-14 में, मतलब इतना सोशल मीडिया का नहीं था, मोबाइल तो आ चुका था खैर, लेकिन सोशल मीडिया का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था समझो। तो आप इसको कैसे देखती हो, सोशल मीडिया के थ्रू होने वाली फ्रेंडशिप और आपके मतलब आप जब यहाँ कॉलेज में थी फ्रेंडशिप, तो उसमें कुछ ऐसा लगता है आपको अलग अलग कुछ है?
1: हाँ बहुत ज्यादा अलग है, मतलब जब हम ऐसे कॉलेज में रहते ना तो तब ऐसे वो हमारी फ्रेंड अब हम जिधर जा रहे हो उधर जाने का ऐसे जो हमारे ऐसे सब साथ में
0: बात
1: दूसरे से ऐसे सब मतलब अब फोन पे बात और ऐसे उस टाइप,
0: यानी आप आर्टिफिशियल ज्यादा हो गए उस टाइम, रियलिटी ज्यादा थी कि एक दूसरे के साथ।
1: तो हम किधर होंगे ऐसे सपोज कुछ होगा अपना तो हम हैं तो अपना फ्रेंड नहीं हम भी रुकते तुम्हारे साथ और ऐसे टाइप में, और किधर जाना होगा घूमने तो सब फ्रेंड हाँ हम चलेंगे साथ में बोल के, तब वैसे वो जो हर एक इसमें जो हमारे फ्रेंड साथ रहते थे ना किधर कुछ देखने जाना है उधर ऐसे कुछ
0: तो
1: घूमने
0: सब
1: साथ में।
0: और जो जहाँ तक के सुख दुख की बात हो तो सब देख के पहचान में आता था कि ऐसा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता ऐसा आपको लगता है? आप भी खुद इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाती हो तो आजकल के बच्चों को देखती हो ऐसा आपकी, अरे वो फ्रेंडशिप की वो बात नहीं रहेगी जो समझो कुछ पिछले जमाने में?
1: तो अभी क्या वो ऐसे वो किधर गए ना वही मतलब स्नैपचैट ये वो मतलब सिर्फ फोटो स्टेटस पे लगाना
0: ज्यादा
1: तो वो ज्यादा तो उनका दिमाग ऐसे जब हम थे तो ऐसा ज्यादा ऐसे बातों से शेयर करते थे, अभी क्या नहीं मतलब अभी तो ऐसा ज्यादा तो स्टेटस है वो उस पे ध्यान रहता है, उतना ज्यादा कौन किसी बात भी नहीं करता।
0: अच्छा अच्छा, तो आसमा देखिए आपने कहा कि आपको फैमिली को प्रायोरिटी देनी है, तो आपने लेक्चरशिप चुनी जिसके वजह से आप फैमिली के साथ भी रह सकती हो और आपने एक मतलब एक आप जॉब भी कर सकती हो, तो सिर्फ यहाँ तक है या आगे आपने कुछ सोचा है कि नहीं मुझे आगे जाके कुछ और करना है, कुछ ऐसा कुछ सोचा है क्या, बस यही इतनी जर्नी जो है ऐसे ही चलनी है?
1: नहीं मतलब ऐसे मुझे ऐसे लगता कि नहीं अभी अच्छे से पढ़ाई करके PhD करके असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब JRF और ऐसे लेना है और ऐसे बेस्ट टीचर बनना है, मतलब हमें हम जब कॉलेज में रहते थे तो जो हमारे को जो कमी लगती थी ना हमारे टीचिंग में जो हमें को ये नहीं मिल रहा तो वो इम्प्रूवमेंट करना है खुद में भी तो हम वो स्टूडेंट को दे सके ऐसा।
0: अच्छा, तो आपने आपके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट की है कि जैसे कि आपने पॉलिटेक्निक करते टाइम जो कंप्यूटर साइंस के मतलब जो सिलेबस था, बाद में इंजीनियरिंग के टाइम, बाद में एमए के टाइम, और आप जो सिलेबस है उसमें कुछ चेंज है, उसके हिसाब से आपने अपग्रेडेशन किया क्या क्या क्या होगा?
1: नहीं तो पहले तो मतलब उतना कुछ ये नहीं होता था कि हाँ हमको सिलेबस रहता था तो वो सिलेबस की बुक्स लाना और पूरा ऐसे रीड करते थे हम ऐसे पूरे रहता था, फिर बाद में पूरे आप उतना अब हमारे को ऐसे नहीं पता रहता था कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो, मतलब हम पूरा पूरा वक्त उसे ही देते थे वो कंप्लीट करना है पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है बोल के, और जब हम ऐसे बीए में आ गए तो फिर हमारे को पता लगने लगा कि हाँ नहीं, तो उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि टॉपिक होते हैं कि वो नहीं भी करे तो चलता है और ऐसे, तो जो प्रायोरिटीज और है ना, तो मतलब ऐसे थोड़े थोड़े ऐसे समराइजेशन हुआ ऐसे इसमें
0: अच्छा।
1: पढ़ाई
0: लेकिन आपने अपग्रेडेशन किया उसके साथ। अच्छा, तो ये तो होगा सब आपके कॉलेज की जर्नी, आपने कैसे पढ़ाई की, या लड़कियों को आमतौर पे स्ट्रगल करना पड़ता है, अगर पेरेंट्स का सपोर्ट हो तो आगे बढ़ सकती है, ऐसा भी आपने कहा। तो सिर्फ इतना ही है क्या आप, मतलब जैसे आपने कहा कि टेंथ तक भी आप अच्छी स्टूडेंट थी, पॉलिटेक्निक में भी इंजीनियरिंग में भी टॉपर रह चुकी हो, तो ऐसे ही था क्या, बाकी भी सब बहुत धींगा मस्ती ऐसा चलता था, ऐसा कुछ जो बोलते ना खोड़कर मुल गया, ऐसा कुछ था
1: नहीं? वैसे नहीं थे हम, मतलब ऐसे फ्रेंड्स में और बातें करते थे, मतलब ऐसे नहीं थे उतने भी ज्यादा।
0: अच्छा, और बाकी हॉबीज, यानी जैसे कि किसी को गाना गाने की हॉबीज रहती है, किसी को क्या रहता है, आपको ऐसा कुछ है?
1: हाँ, रीडिंग ही थी।
0: अच्छा, अरे वो भी पढ़ाई के हिसाब से ही हो गया, दूसरा कुछ ऐसा मूवीज देखना ऐसा कुछ है वैसा?
1: हाँ, मतलब सुनना है, गाने सुनना और ऐसे
0: गाने सुनना ही ज्यादा था, सॉन्ग सुनना। अच्छा, और मूवी देखी नहीं कभी आपने?
1: हाँ, मूवी भी देखते ना,
0: कॉलेज में जब थे कौन सी मूवीज देखते थे?
1: ऐसे साउथ की मूवी देखते थे ज्यादा।
0: साउथ की मूवी?
1: हाँ।
0: और कहाँ पे देखते थे?
1: ऐसे लैपटॉप में। हाँ, लैपटॉप में। एक्चुअली हम हॉस्टल पे रहते थे, जब एक मूवी किसके पास आई ना पेन ड्राइव में, हाँ, तो सब सर्कुलेट हो जाती थी हमारे हॉस्टल में, कौन सी नवी मूवी किसने लाई ना, तो सब के ऐसे लैपटॉप में पेन ड्राइव से हम ले लेते थे और सब हॉस्टल में बहुत इंजॉय करते थे उसे लेके। अच्छा। तो मूवी हमारे पास आ ही जाती थी, न्यूज जो निकली ना, तो लैपटॉप तो कंपलसरी रहते थे सबके पास, तो उस पे देखते थे हम। अच्छा।
0: और ऐसे कभी थिएटर में वगैरह जाके? यहाँ तो खैर उस टाइम मेरे ख्याल से
1: कॉलेज टाइम में तो नहीं देखे।
0: हाँ।
1: तो पर ऐसे देखते थे नॉर्मली, कब ऐसे छुट्टियों में और कई बात नहीं।
0: अच्छा, और गाने कौन से सुनते थे?
1: मतलब वो इसके हिसाब से, जब कुछ असाइनमेंट लिखनी होगी तो उसके हिसाब से।
0: फिर भी कौन से? हिंदी और कौन से पुराने नए, कौन से?
1: 90s के
0: ज्यादा गाने सुनते थे। अच्छा, यानी 2014-15-16 में भी 90s के। अच्छा, और कौन से गाने ज्यादा आपको पसंद आते थे 90s के भी?
1: मतलब वैसे
0: आप कौन सा याद आ रहा है कि जो आप असाइनमेंट लिखते टाइम शायद गाने सुनती होगी या कोई मूवी में देखा होगा? जैसे आपने कॉलेज में यहाँ पे आए तो आपको उधर ऐसे जैसे आपने सर घुमाए उधर लेडीज हॉस्टल है, तो गर्ल्स हॉस्टल की तरफ देखते ही आपको याद आ गया कि मैं यहाँ पे गाने सुनती थी, ऐसा कुछ? या जैसे आप यहाँ से आते होगी कैंटीन दिखा होगा, ये कैंपस में आए होंगे, तो दिमाग में गाना चलता होगा कि यार उस टाइम में ये सुनती थी, कौन सा ऐसा गाना था?
1: हम वो सुनते थे, मतलब वो रंग मूवी में का, वो तुझे ना देखो तो चैन मुझे आता नहीं है।
0: अच्छा, और दूसरे कौन से गाने?
1: और अभी ऐसे अभी भी लेटेस्ट भी सुनते थे बेफिक्रे मूवी में का और ऐसे।
0: हाँ, अच्छा, लेकिन ये गाना आपके पहले दिमाग में आएगा तुझे?
1: हाँ,
0: ना देखूं
1: तो जब हम टेंथ में भी रहते थे ना, तो जब ऐसे कुछ पढ़ाई करते थे रेडियो पे और वही गाने चलते थे। वो ऐसे वो गाने ऐसा रिमाइंड होते, वो दिल में याद आते कि हाँ हम टेंथ में, याद दिलाते वो हमारा, मतलब ईयर्स याद दिलाते, तब ये सुनते थे बोल कैसे।
0: तो देखिए आसमा, आपके 5 बहने हैं, आज आपके साथ आयशा भी आ चुकी है जो कि अभी नवोदय स्कूल में एज ए टीचर के तौर पे जॉब कर रही है या फिर वो सब कुछ देख रहे, तो अभी तक की जर्नी में आपको क्या लगता है कि एज एक लड़की के सोच पे, यानी एक आप एक लड़की भी हो साथ में एक मुस्लिम कम्युनिटी से भी हो जहाँ पे बहुत सारा ऐसा कहता है कि बहुत सारे बंधन रहते हैं या कुछ ऐसा रहता है, उसके में भी आप पढ़ाई करके आपके पिताजी ने आपको बहुत मतलब सपोर्ट किया आपके पूरे फैमिली को, इसलिए आपके सभी बहनें भी पढ़ चुकी है, तो सब आपको क्या लगता है पूरे जर्नी का, अगर आपको 1-2-3 लाइनों में अगर आपको ये करना है, उसको एक्सप्रेशन देना है उसको, तो कैसे आप उसको एक्सप्रेस करोगे?
1: मतलब ये तो थे हम, तो मतलब हमारे पापा ने बहुत इनकरेज किया है।
0: अच्छा।
1: तो ऐसे बोलते थे कि मतलब तुम लाइफ में बहुत कामयाब हो, तो पढ़ाई जॉब के लिए मत करो, सिर्फ कामयाब होने के लिए करो, तो पर कुछ परेशानी आ गई तो पढ़ाई सिर्फ का तुम्हारे को सॉल्यूशन बोल के आनी चाहिए और ऐसे। अच्छा।
0: और अंबिका तो आपने नाम भी नहीं लिया, तो शायद उन्होंने कुछ तो बोला होगा कि अरे छोड़ पढ़ाई बिढ़ाई क्या करने से, खाना बीना पकाने को सीख लो, वही काम में आने वाला, ऐसा कुछ
1: नहीं। मतलब मेरे पापा, मेरे मम्मी और पापा बहुत ऐसे एक रहते थे।
0: अच्छा,
1: तो हमारी मम्मी भी बोलती थी कि नहीं पढ़ाई करो।
0: अच्छा,
1: ऐसे इतना पापा पढ़ा रहे तुमको इतना मेहनत से, तो अच्छा पढ़ो। तो मेरी मम्मी भी बहुत सपोर्टिंग थे। जब ऐसे हमारे को कुछ ऐसे बाहर जाना होता था ऐसे, मतलब पढ़ने के लिए ऐसे हैदराबाद इधर उधर, तो तब हम ऐसे मम्मी को बोलते थे, पहले मम्मी को बोलते थे कि मम्मी उधर जाना है, तो फिर मम्मी भी ऐसा हाँ पापा को फिर बोलते थे कि हाँ, फिर पापा फिर दोनों मिलके डिसीजन लेते थे।
0: अच्छा अच्छा, तो आपके फैमिली में पूरा पूरा के पूरा तरीके से सपोर्ट था। तो फिर ठीक है, एज आसमा जी आप देखिए, आपने इतनी पढ़ाई कर चुके हो आप पॉलिटेक्निक से लेके एमई तक, और साथ में आज लेक्चरर भी हो, तो आप क्या कहना चाहोगे उन सारी लड़कियों को जो आज पढ़ाई कर रही है, अलग अलग ब्रांचेस में कर रही है, वो बात अलग है, लेकिन जो ऐसे बहुत सारे रूरल ग्रामीण भाग से भी आती है, बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी से भी लड़कियां यहाँ पे पढ़ने आती है, तो सबको मिला जुला के आप क्या कहना चाहोगे कि आगे किस तरीके से बढ़ना चाहिए, फैमिली वैल्यूज को भी कैसे पकड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप एंड में क्या कहना चाहोगी?
1: मतलब ना पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, मतलब पढ़ाई पढ़ाई से हमारी खुद की भी वैल्यू बहुत बढ़ती है। जब मतलब हम जब लाइफ में कुछ जॉब और ऐसे करते हैं तो हर एक जने रिस्पेक्टफुली देखता है हमको, तो ऐसे और समझदारी के लिए मतलब वो भी सपोर्ट तब जब हम मैरिड होते हैं तो तब भी पढ़ाई हमें बहुत हौसला देती है।
0: अच्छा।
1: मतलब ऐसे कुछ ऐसा प्रॉब्लम भी आ रहे तो नहीं, हमारे को लगता हाँ नहीं हम पढ़े सो हैं, हम कुछ भी हुआ तो हम कर सकते हैं जॉब, खुद खड़े हो सकते हैं ऐसे नहीं। तो आजकल क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम भी आ गए ना ऐसे मैरिड लाइफ में, और तो बहुत सारी लड़कियां ऐसे घबराते, अब यहाँ से जाने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे को सपोर्टिंग नहीं है, हम ये लात के देते हैं तभी हम डिपेंड हैं, तो हम ये छोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, मतलब वो सहन करते हैं बहुत कुछ ऐसा। तो जब हम पढ़ाई करते तो ना हमारे को, हम भी सहन करते हैं पर हमारे को थोड़ा इतना रहता है कि दिल में नहीं, ये तो मतलब एक लेवल तक सहन करते हैं, बाद में से ऐसे लगता है कि नहीं हमारे पर पढ़ाई भी है, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं और जीने के लिए उतना तो कर सकते हैं पढ़ाई से।
0: अच्छा।
1: तो पढ़ाई बहुत जरूरी है।
0: अच्छा,
1: तो एक कॉन्फिडेंस दिलाती है हमको भी कि ऐसा हारना नहीं है लाइफ में।
0: यस, तो आसमा बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करते हुए कि आपने पूरी आपकी ये जो जर्नी है ये पढ़ाई से लेके अब तक की वो बोल दी है, और जितना फैमिली वैल्यूज के बारे में आपने बहुत ज्यादा उसको जोर दिया उसके ऊपर कि उसको बहुत ज्यादा आगे लेके जाना चाहिए, तो वो भी हमको बहुत बढ़िया लगा। तो आखिर में वही गाना सुनाए जो आपने कहा था कि तुझे ना देखूं, या कोई और गाना आप चाहेंगे कि वो ये मुलाकात के एंड में हम सुनाते हैं लोगों को, तो कौन सा ऐसा गाना, क्या वही गाना सुनाना है या कोई अलग है गाना? और
1: नहीं, अरिजीत सिंह का कोई भी।
0: अरिजीत सिंह का, अच्छा थोड़ा सा भी चेंज हो गया, अरिजीत सिंह का कौन सा ऐसा गाना?
1: आशिकी में का,
0: आशिकी में का, यानी आशिकी टू में का ना गाना हुआ।
1: अच्छा, आशिकी टू में का।
0: अच्छा ठीक है, तो वो भी गाना सुनवाएंगे, और आप यहाँ पे आई इसलिए हम बहुत मतलब रेडियो तैरना टीम की वजह से, और रेडियो तैरना टीम, रेडियो के बारे में आपने कुछ कहा भी नहीं क्योंकि रेडियो तैरना तो स्टार्ट हो गया, वैसे तो आप 2020 में, उससे पहले बहुत काफी पास आउट हो गई थी,
1: लेकिन
0: 2021 से रेडियो तैरना भी स्टार्ट है, तो आपको कैसा लगा कॉलेज में आने के बाद रेडियो देखने के बाद कैसा लगा?
1: मुझे अभी पता चला कि ये हमारे कॉलेज का भी एक रेडियो स्टेशन बना है, तो मुझे बहुत खुशी हो गई कि मतलब जब हम ऐसे छोटे थे ना तो हम बहुत ऐसे ऐसे ध्यान लगा के रेडियो सुनते थे।
0: हाँ,
1: और आप भी हमारे को, हाँ, तब जब हम रहते थे ना 7th 8th में, तो हम आपकी आवाज ऐसे कितने प्यारी आवाज है ऐसे लगता था, मुझे आप बहुत ज्यादा खुशी हो रही कि आप आपको देखा है सामने।
0: अच्छा, आकाशवाणी में मित्रों मी जेव्हा आकाशवाणीत होतो त्यावेळेस आसमा आणि त्यांच्या घरचे सगळेजणच रेडिओ ऐकायचे, आणि त्यावेळेसपासून ते खरं तर खूप म्हणजे चाहते आहे त्याबद्दल, वैसे तो मैं आपका भी शुक्रिया करना चाहूंगा, और खास तौर पे आपके पिताजी का, हालांकि वो अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा हमको मतलब प्यार भी किया, ऐसा आपने कहा कि रेडियो के जरिए प्रोग्राम सुनते हुए। फिर भी मैं आपको बहुत मतलब मैं आपको विशेष देना चाहूंगा कि आप आगे बढ़ते रहो, आपकी PhD कंप्लीट करो, और असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके आप प्रिंसिपल तो बनना चाहोगी आप, तो आप प्रिंसिपल भी बने, या मैं आपको वैसे तो, और आपके साथ आपकी बहन आयशा भी आई है, तो मैं आपका भी शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया।
0: आणि आपण ऐकत रहा रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज। सदैव रेडिओ तरुण ट्यून करा 90.4 एफएम वर किंवा आपण अँड्रॉइड फोन किंवा ॲपल फोन वापरत असाल तर गुगल प्ले स्टोअर किंवा ॲप स्टोअरवर रेडिओ तरुण हे ॲप उपलब्ध आहे. आपण रेडिओ गार्डनवरही रेडिओ तरुण ऐकू शकता. त्यासाठी पृथ्वीच्या ग्लोबवरील उस्मानावाला जर टच केलं तर आपल्याला ऐकायला येईल केवळ रेडिओ तरुण. आपण http://radio.coe.usmanabad.ac.in या वेबसाईटला भेट देऊन ऐकू शकता रेडिओ तरुण. आपण आमच्या फेसबुक पेज आणि इंस्टाला लाईक करा, फॉलो करा. तसेच आपल्याला हा कार्यक्रम कसा वाटला ते जरूर कळवा. त्यासाठी व्हॉट्सअप क्रमांक आहे 9970500 ऐकत राहा, आनंदी राहा. रेडिओ तरुण 90.4 FM आपली माणसं आपला आवाज.

0: मानो।
1: ठीक है, तो मैं सारी रात यही रहूंगी। लोग मुझे उठाकर ले जाएंगे, तब आना, फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी।
0: Get lost।
1: पक्का नहीं मान रहा?
0: हाँ नहीं मान रहा, जो करना कर ले, घड़ी घड़ी ड्रामा करती है
1: राजा। ठीक है,

0: मैं उसके लिए मर चुकी हूँ।
1: वो भी आपकी यादों में पल पल मर रहा है।
0: तो कह दो उसे कि उन यादों की चिता बना के जला दे।
1: उस चिता से उठता धुआं भी आपके प्यार का ही होगा।

0: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
1: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ
0: एक कमबख्त दिल है की गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है।
1: तो भुगतो।

0: 2019 तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयातूनच त्यांनी बी सी एस ईमधून पूर्ण केलेलं आहे. त्याच्या अगोदरचं शिक्षण आसमा यांचं फिनिक्स पॉलिटेक्निक लोदगा जिल्हा लातूर येथून त्यांचं पॉलिटेक्निक पण झालेलं आहे. अशा पद्धतीने इंजिनिअरिंगच्या क्षेत्रामध्ये पूर्णपणे करिअर करत असताना आता त्या सध्या सिद्धेश्वर इंजिनिअरिंग कॉलेज सोलापूर इथे असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून कार्यरत आहेत. तेव्हा आज त्यांच्या जीवनाचा आपण हा प्रवास जाणून घेणार आहोत. आसमा, मी आपलं स्वागत करतो रेडिओ तरुणाच्या स्टुडिओमध्ये.
1: थँक्यू.
0: तो अगर आप चाहिए तो आप हिंदी में भी कंफर्टेबल है तो हिंदी में बात कर सकते हो, मराठी में कर सकते हो, सभी लैंग्वेज यहाँ पे चल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. फिर भी मैं आसमा जी आपसे पूछना चाहूंगा कि 2020 में आप यहाँ पे यहाँ से पास आउट हो गए, यानी कोरोना का उस टाइम पीरियड चल रहा था, तो 2020 के बाद आप पहली बार यहाँ पे तेरणा इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में आए हो?
1: नहीं, मतलब उसके पहले भी आए थे, ऐसे प्रोसेस रहते ना उसके और
0: टीसी के इसके लिए. अच्छा, इसके पहले कब आए थे फिर तेरणा इंजीनियरिंग कॉलेज पे?
1: ये सबमिशन और एमई का,
0: एमई के सबमिशन के वक्त आ गए थे, यानी 2020 में पास आउट हो गए थे ना. तो 2020 से आज लगभग 2026 चल रहा है, तो ये 6 सालों में कभी आना नहीं आना हो गया था?
1: नहीं नहीं, कभी नहीं.
0: जो जब भी आए थे तो 2020 में ही थे.
1: हाँ.
0: अच्छा, तो 2019 को आपने बीए कंप्लीट किया था पॉलिटेक्निक. हाँ. के बाद यानी सेकंड ईयर में आपने एडमिशन लिया होगा.
1: हाँ.
0: तो लगभग मेरे ख्याल से 16 में एडमिशन लिया था.
1: हाँ.
0: 17 में.
1: हाँ.
0: कब लिया था एडमिशन?
1: 2014-15
0: में. तो
1: 2017 पास आउट है. 2014 में यहाँ पे बीई को एडमिशन लिए से था. और 15-16-17 को पास आउट है.
0: अच्छा.
1: और ये इसकी वजह से, कोरोना की वजह से ना, थोड़ा वो पेंडिंग में थे सब्जेक्ट, ये प्रोजेक्ट.
0: अच्छा.
1: तो इसलिए 2019 का पास आउट 20 हुआ ऐसे.
0: अच्छा अच्छा अच्छा.
1: हाँ, तो बीई 2017 में वैसे.
0: अच्छा, बीई 2017 में हो गई है.
1: हाँ.
0: अच्छा, तो आपने कहा था पहले 2019, लेकिन 2017 में बीई कंप्लीट. हाँ. हो गई है और 2020 में एमई कंप्लीट हो गई.
1: हाँ.
0: है. अच्छा अच्छा. तो आपने जैसे बोला कि 2017 यानी लगभग उसके भी पहले, यानी 3 साल पहले, यानी 2013 में आपने एडमिशन लिया होगा, 2014 में. अच्छा, तो ये आपने कैसे सोच लिया था कि आपको तेरणा इंजीनियरिंग कॉलेज में ही पढ़ने को आना है, क्योंकि आपका पहले पॉलिटेक्निक भी हो गया था ऐसे कहा?
1: मतलब ये रेप्यूटेड कॉलेज है ना, और ऐसे नजदीक भी है, और एज मतलब रेसिडेंशियल भी रहने के लिए अच्छा है, कैंपस है अच्छा, तो सब ऑल तरीके से परफेक्ट था, तो इसलिए यहाँ पे एडमिशन ली. और यहाँ से ना तो पेरेंट्स भी इजीली मिलने आ सकते थे ना, मतलब हमारे प्लेस से मिलने के लिए भी, कुछ इमरजेंसी हो गई तो ये सब तरीके से अच्छा था कॉलेज.
0: अच्छा,
1: तेरणा कॉलेज.
0: अच्छा, तो आसमा जी जैसे अभी तेरणा इंजीनियरिंग कॉलेज को आपने सेलेक्ट किया, लेकिन उसके पहले आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ.
1: हाँ.
0: तो आफ्टर 10th आपने पॉलिटेक्निक ज्वाइन किया, तो ऐसे बचपन से ही दिमाग में था कुछ इंजीनियरिंग करना है या कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ था?
1: हाँ, तो बचपन से ऐसा लगता था कि इंजीनियर बनना है. बल्कि
0: क्यों, ऐसा क्यों लगता था? क्यों, आपका कोई इंस्पिरेशन था, आपके फैमिली में से कोई था, ऐसा क्या था?
1: तो फैमिली में से तो नहीं था, लेकिन ऐसा ऐसे जो हम जब कुछ आर्टिकल और देखते ना, तो वहाँ पे ऐसे इंजीनियरिंग के इंजीनियर्स के फोटो और रहते थे ना, तो लगता था हाँ ऐसे बनना है. और
0: अच्छा अच्छा, जैसे कि मैं आपको थोड़ा जानता हूँ, आप उजनी से हो, तो जैसे हमारी पहले बातचीत भी हो गई थी, आपका 10th तक की जो पढ़ाई है वो सब उजनी में हो गई थी. उजनी यानी उस तरीके से देखा जाए तो एक छोटा गांव है. छोटा गांव यानी मार्केट वहाँ का बढ़िया है, लेकिन फिर भी छोटा गांव है. तो 10th तक की वहाँ पे पढ़ाई बोलो, या फिर जैसे कि वहाँ पे आपके फैमिली हो, तो आपको कैसे, मतलब कैसे सोच लिया उन्होंने कि एक लड़की होते हुए भी आपको पढ़ाना है, आगे लेके जाना है, तो कैसा रहता था माहौल?
1: मतलब मेरे फादर जो है ना, एजुकेटेड थे ऑलरेडी, और वो बिजनेसमैन थे, तो उनको ऐसा लगता था कि ऐसे लड़कियों ने भी उनके उनके ऐसे पैर पे खड़े होना है, उनको लाइफ में कब प्रॉब्लम आ गई तो उनको ऐसा एजुकेशन उनका सपोर्ट बनना चाहिए. तो इसलिए मतलब उनको 5 लड़कियां थी, फिर भी उन्होंने हर एक को ऐसा बेस्ट क्वालिटी का यूपीजी तक का एजुकेशन दिया है. तो उनको ऐसा लगता था कि ऐसी इनको प्रॉब्लम आई तो एजुकेशन काम को आना इनके ऐसे.
0: अच्छा, तो आप बड़ी हो कैसे?
1: नहीं, मैं 3 नंबर हूँ.
0: 3, तो आपके 2 बड़े बहने क्या करते हैं?
1: ओ, एक मतलब वो ऐसे उर्दू में टीचर है, और एक दूसरी बीए हुए से है ऐसे वो.
0: अच्छा.
1: और मैं यमी हुए से मेरी.
0: अच्छा, और आपके साथ आज आपकी बहन भी आ गई, उनका नाम?
1: आयशा यूनुस सैयद है और वो भी ऐसे नवोदय विद्यालय में एज अ पीजीटी कंप्यूटर टीचर जॉब वर्क करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, तो इतनी सारी पढ़ाई वो भी लड़कियों की, और खास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी होते हुए भी पढ़ाई का इतना ज्यादा तवज्जो देना, उनको ज्यादा से ज्यादा इनकरेज करना, तो आपको बढ़िया लगता है ये सब?
1: हाँ,
0: वो भी उजनी जैसे गांव से निकल के आना।
1: हाँ नहीं, हमारा गांव भी मतलब बहुत अच्छा है ऐसे। हाँ। लड़कियों के बारे में ऐसे ब्रॉड माइंडेड है, मतलब ऐसे लड़कियां पढ़ना आगे बढ़ना ऐसे बहुत अच्छी है हमारे गाँव की।
0: तो ये टेंथ के बाद आपका कैसा डिसाइड हो गया कि आपको पॉलिटेक्निक करना है? इलेवन ट्वेल्थ करके भी आप आगे भी इंजीनियरिंग को आ सकती थी या मेडिकल को भी जा सकती, तो ऐसा क्या होगा कि आपको पॉलिटेक्निक ही ज्वाइन करने के लिए सोच लिया?
1: मतलब ऐसे हमारे कजन थे तो दूर के थे, पर ऐसे वो पॉलिटेक्निक में थे पुरन मल्ला होटी में, तो फिर ऐसे उनको ऐसे वो बोलते थे कि हाँ यहाँ पे ये भी एक ब्रांच है, यहाँ से डायरेक्ट इंजीनियरिंग को जाने आता हो, तो उससे वे बढ़ जाते हैं कंप्यूटर साइंस से, तो इसलिए उन्होंने ऐसा उन्होंने बोला, प्रोसेस सब ऐसा ऐसा होता है, तो फिर वो उसी से
0: पॉलिटेक्निक ज्वाइन कर लिया आपने। अच्छा, तो ये पॉलिटेक्निक में कंप्यूटर साइंस ही आपका सब्जेक्ट था?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो आपके ये पॉलिटेक्निक के कैसे साल रहे, आपने कंप्यूटर की पढ़ाई कैसे की, क्योंकि उजनी से 10th तक तो पढ़ाई की हुई थी, उसके बाद पॉलिटेक्निक में जाने के बाद आपने कैसे सब वहाँ पे स्टडी बोलो या कैसे आपकी मतलब एकेडमिक कैसे रहा, ये बोलिए आपका पॉलिटेक्निक हो या यहाँ का इंजीनियरिंग का हो, आप पढ़ाई कैसे करती थी, क्या क्या करते?
1: मतलब ऐसे मैं जब कॉलेज में गई ना पॉलिटेक्निक के, तो फिर एक्चुअली मुझे सिविल ब्रांच लेनी थी।
0: अच्छा।
1: लेकिन हमारे पापा ऐसे बोलते थे कि नहीं, कंप्यूटर को इन फ्यूचर बहुत स्कोप आएगा और लड़कियों के लिए कंप्यूटर अच्छा है, तो इसलिए उन्होंने कंप्यूटर में डाला।
0: अच्छा।
1: था,
0: लेकिन सिविल क्यों सोचा था आपने?
1: तो मेरा मैथ बहुत परफेक्ट था, तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि कंस्ट्रक्शन अच्छा है आपके लिए।
0: अच्छा।
1: तो फिर बाद में से मैंने सोचा भी था कि कंप्यूटर फर्स्ट ईयर पास आउट के सिविल को नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट इसमें चेंज करेंगे।
0: हाँ।
1: लेकिन बाद में से कंप्यूटर में मतलब बहुत अच्छी है कंप्यूटर ब्रांच एक्चुअली उसमें के सब्जेक्ट, और तो फिर मुझे ऐसे लगा कि नहीं यही ठीक है, तो यही कंटिन्यू करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, तो ये कंप्यूटर साइंस आपका पॉलिटेक्निक कंप्लीट जैसे 3 साल हो गए, तो 3 साल में आप लगातार पास आउट होते रहे?
1: हाँ, मैं टॉपर थी हमारी कॉलेज की।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: और टेंथ में भी मतलब सेकंड नंबर आया था गणेश विद्यालय से, और इसमें भी कॉलेज में भी एक नंबर ही थी मैं।
0: अच्छा, तो जैसे आपने तेरना इंजीनियरिंग कॉलेज को एडमिशन लिया, जैसे तो 10th तक टॉपर, पॉलिटेक्निक में भी टॉपर थी, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में आने के बाद आपको फिर कैसे कैसे और आगे?
1: हाँ, यहाँ पे भी मतलब ए भी कॉलेज बहुत अच्छा था हमारा तेरना कॉलेज, तब यहाँ पे वहाँ पे ऐसे जब ऐसा नहीं है तब ऐसे छोटे रहते थे कि नहीं अपने को एक नंबर आना है, पर जब यहाँ पे आए ना तो ऐसा लगा कि नहीं थोड़ी लाइफ भी देखनी है, थोड़ा रिलैक्स भी रखना है।
0: अच्छा,
1: पढ़ाई करनी है, सब्जेक्ट क्लियर निकालने है, तो मतलब फर्स्ट मतलब डिस्टिंक्शन आया बस, तो उतना मेहनत नहीं करनी टॉपर के लिए, इसलिए थोड़ा लाइफ को ऐसा थोड़ा ऐसा फ्रेंड्स बनाए, फिर ऐसे थोड़ा उनके साथ ऐसा ये करें।
0: डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लिया था ना, तो फिर कैसे सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर कैसा रहा यहाँ?
1: हाँ, मतलब बहुत अच्छा रहा, मतलब वो अभी भी मेमोरी सामने है, बहुत मतलब कॉलेज में बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिल गए हमको।
0: यहाँ पे कॉलेज में आने के बाद पढ़ाई कैसे किया करते थे ये बोलिए, ताकि कैसे कि आप फ्रेंडशिप भी करते थे, चिल भी किया करते थे, लेकिन फिर भी यहाँ की पढ़ाई, दिन भर की पढ़ाई बोलो, लेक्चर्स अटेंड करना, क्योंकि लगभग आपने कहा था कि 2013-14 की बात है, ये सेकेंड ईयर डायरेक्ट आपने एडमिशन लिया होगा, तो कैसे चलती थी पढ़ाई उस वक्त?
1: मतलब ऐसे क्या जो ऐसे टीचर पढ़ाते थे अच्छा, तो फिर तो ऐसे बुक्स लाइब्रेरी के हम रेफरेंस बुक और ज्यादा यूज करते थे, मतलब टीचर के नोट्स प्लस लाइब्रेरी के बुक्स और ऐसे।
0: तर मित्रांनो, आपण जी चर्चा करत आहोत ते आसमा युनुस सय्यद यांच्याशी, त्या 2020 एमई सीएससी म्हणजे कॉम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग मधून पास आउट आहे, 2017 त्यांनी बीई पास आउट केलेला आहे, आणि त्याच्या अगोदर त्यांनी पॉलिटेक्निक पण केलेला आहे, आणि सध्या सिद्धेश्वर इंजिनिअरिंग कॉलेज सोलापूर इथे असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून आहेत। तो आसमा जी, आपको ये पूछने का मतलब ये था कि आज आप लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो उसके हिसाब से उसको रिलेट करेगा ये मेरा क्वेश्चन कि आप उस वक्त कैसे पढ़ाई किया करती थी, क्योंकि आपने एमई भी बाद में साथ में कंप्लीट किया, तो जैसे कहा कि आपने लाइब्रेरी में जाके बैठते थे, बुक्स रेफर करते थे, तो क्या आप इंटरनेट का और जो आजकल का जो चला है वैसा कुछ उस टाइम यूज नहीं किया करती थी?
1: हाँ, नहीं उतना नहीं था इंटरनेट।
0: अच्छा अच्छा, तो जैसे आप देखो थोड़ा सा हम अगर मर्ज करेंगे ये क्वेश्चन को आज के क्वेश्चन में, तो आज आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो ओबी शोरापुर जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो आज के लड़के देखते होंगे, लड़कियां देखते होंगे कि जो पढ़ाई करते टाइम ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट का या ऑनलाइन जितने भी सोर्सेस है उसका यूज करती है, शायद लेक्चर भी उतना अटेंड करते हो या ना करते हो मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसको देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि आप जब पढ़ाई किया करते थे 2014-15-16 तक, तो बुक्स रेफर करना, लाइब्रेरी में जाके बैठना, लेक्चर ज्यादा से ज्यादा सुनना, वो ज्यादा आसान था या आपका ज्यादा आसान है जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो?
1: मतलब मुझे ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा आसान हुए हो गए से, मतलब हम ऐसे जब आप कोई टॉपिक रहता था तो हम सोचते थे कि ऐसा इसका रियल में यूज़ क्या किधर होता है रियल में यूज़, फिर ये बनाने के क्यों आइडिया आया ये बनाने का और ऐसे प्रोग्रामिंग में, और तो फिर कैसे बना ऐसे, वो जो सवाल के रहते थे ना तो वो बुक्स में सिर्फ ऐसे रेफरेंस बुक में ऐसा कैसे बनाओ ऐसे पूरा रीड करना पड़ता था, पूरी ब्रीफ रहता था, और बिना ऐसे ये बहुत अच्छा है इंटरनेट का, तो शॉर्टली हमारे को सब ऐसे चार GPT है तो ये है, तो वो आसान तरीके से बोलते हैं अपने को, हमने को 2-3 बुक लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये किस में वो बोलते हैं कि कैसे आया क्यों आया क्या यूज है ऐसे, पर ऐसे बुक्स तो ऑलवेज ग्रेट है तो उतना ज्यादा नॉलेज
0: क्योंकि आप डिफरेंशिएट आप क्यों कर सकते हो, क्योंकि हालांकि दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि जो ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ता है उसको ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा जल्दी हो जाती है, तो आपने किताबें पढ़ के जितना भी नॉलेज हासिल किया अभी जो देखा जाए तो ये इंटरनेट के जरिए मिलता है तो काफी इजी मिल रहा है, इसलिए जो दिमाग जो चलाना है उतना चल सकता है नहीं चल सकता है कैसे लगता है?
1: हाँ मतलब नहीं चल सकता ऐसा लगता है, क्योंकि तब आप जब अपन मेहनत
0: इजीली मिल रहा है,
1: इजीली मिल रहा है तो तब हमारे को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, मतलब ऐसे किताब सर्च करो ऑथर के नाम से, फिर उसमें पॉइंट सर्च करो, टॉपिक सर्च करो, ऐसे एक एक सब्जेक्ट के ऐसे 2-5-5-6-6 ऐसे बुक्स रहते थे, अभी बहुत आसान है, मतलब इजीली मिलता है। अब एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर हम जब भी ऐसा, हमारे को भी पहले पढ़ना पड़ता है ना स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, तो जब हम ऐसे ऐसा शॉर्ट में हम देखना चाहते हैं ना तो हमारे को भी बहुत इजी जाता हो, तो एज मतलब अभी बहुत आसान हुए
0: वैसे है। अच्छा, तो जैसे ये अगर हम इसको ही अगर थोड़ा सा और आगे लेके जाए तो इससे करियर बनाने में उसमें आसानी हो जाती है, डिस्ट्रक्शन ज्यादा बढ़ जाता है? जैसे कि ठीक है अगर आसान हो जाता है पढ़ाई के हिसाब से, अगर कोई ऑनलाइन सर्च कर रहा है तो उसको जल्दी जल्दी आसानी से मिल रहा है तो हो सकता है कि वो ग्रोथ करे, लेकिन उसके साथ डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो आप कैसे देखते हो बच्चों के, जैसे कि आप भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हो तो वहां पे कैसे माहौल रहता है, कैसा है, बच्चों को आप कैसे समझाते हो, क्योंकि आप खुद यहाँ तेरना इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ी है, यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि अभी अलग अलग ब्रांचेस में अपनी पढ़ाई कर रहे, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इसको आगे लेके जाना चाहिए, जो सोशल मीडिया की वजह से डिस्ट्रक्शन होता है या कैसे होता है?
1: हाँ तो फिर जब हम ऐसे अभी इंटरनेट पे हम कैसे पढ़ाई करते हैं एज मतलब पेपर के लिए ही करते हैं, पर जब हम ऐसे बुक्स और सब रीड करते हैं तो थोड़ा बहुत हमारे को बाद में से भी याद आता है, जब हम लास्ट ईयर में जाते तो हम सेकंड ईयर में क्या पढ़े सो वो भी थोड़ा रिमाइंड होता है, लेकिन अभी क्या होता है हम उतना उतना करते और जाते तो फिर वो उसके लेवल भी जो रहती है ना मतलब स्टोर करने की तो वो भी वो कम होती क्या कैपेसिटी, मतलब
0: अच्छा
1: भूलते तो भी जितने जल्दी याद आता उतने जल्दी भूल भी जाते ऐसे, मतलब वो हमारे को ये उतना ज्यादा याद नहीं रहता कि हमने क्या पढ़ रहे थे क्यों पढ़े थे ऐसे।
0: अच्छा, तो जैसे कि आप खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हो, लेकिन जहां तक मैं आपकी जर्नी देख रहा हूं कि पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस में हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, बाद में एमए की डिग्री भी हो गई, मास्टर डिग्री भी हो गई, इतना सब कुछ कंप्यूटर साइंस में होते हुए भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ गए, आपको तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी।
1: एक्चुअली मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ था यही तेरना कॉलेज में, बेंगलोर के मैसूर की कंपनी में।
0: अच्छा,
1: हाँ सीडैक कंपनी थी।
0: हाँ,
1: तो फिर उसमें हुआ था, लेकिन वो मेरे ऐसे पप्पा ने बोले कि मतलब ऐसे उतना दूर मैसूर को जाना मुझे ऐसे थोड़ा दिल घबरा रहा है।
0: अच्छा।
1: तो बोले ऐसे कि मुझे नहीं थोड़ा ही लग रहा, तो तुम आगे जो बोलते मैं वो करता, लेकिन मुझे तो मुझे यहाँ पे घबराहट हो रही। तो फिर मैंने बोली कि हाँ हाँ नहीं तो नहीं, तो फिर वहाँ पे उनको बोल दिया कि हम ज्वाइन नहीं कर रहे, और ऐसे कैंपस सिलेक्शन हुआ था। तो फिर अच्छा। बाद में से ये हैदराबाद में क्लासेस के लिए भेजा था पापा ने मेरे प्रोग्रामिंग के क्लासेस आमिरपेट में।
0: अच्छा, ये इंजीनियरिंग के बाद। अच्छा, तो जैसे देखिए ना, मतलब आपको कभी ऐसा मतलब नहीं लगता है जैसे कि आपके कोई आप क्लासमेट भी होगे उस वक्त के जो आपके कंप्यूटर साइंस के होंगे, शायद हो सकता है कोई पुणे हो, कोई मुंबई हो, कोई अब्रॉड हो।
1: सब मेरे क्लासमेट जो है वो भी बहुत सक्सेसफुल हैं, सभी मतलब सभी जो है ना तो सब जॉब और कर रहे हैं, विप्रो में हैं, इन्फोसिस में हैं सभी। अभी
0: कोई अब्रॉड भी होगा
1: शायद, वो उतना नहीं, पर मेरे जो कांटेक्ट में है ना मेरे क्लासमेट तो वो यहाँ अपने यहाँ पे है और अच्छे इसमें है वो पैकेज में और सक्सेसफुल हैं सब।
0: अच्छा, तो आपको आपको ऐसा नहीं रिग्रेट लगता कि यार ऐसा कुछ हो सकता था लाइफ में?
1: हाँ, मुझे अभी सर मतलब जब मैं टीसी निकालने आई थी लिविंग सर्टिफिकेट, तो सर उनको याद था कि मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ था, तो सर बोल रहे थे अभी कि हाँ मैडम मतलब बेटा कि तूने वो ज्वाइन किया होता तो अभी तुम्हारे को बहुत ज्यादा पैकेज रहता था, पप्पा की वजह से तुमने ज्वाइन नहीं किया। मतलब उनको याद है अभी।
0: हाँ,
1: तो लगता है मतलब वहाँ पे गए होते तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुई होती लाइफ में।
0: अच्छा अच्छा, तो ठीक है, आज भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो जो आपके लाइफ में समझो जैसे कि आप आपके पिताजी ने कहा कि नहीं मतलब इतने दूर नहीं भेजना है, होता है होम सिकनेस होता है लड़की बोले तो किसी भी पिताजी को लगता है कि सिक्योरिटी या सब चीज के लिए, लेकिन फिर भी आप उस वक्त उनको कन्विंस नहीं कर पाई कि नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ, यहाँ तक पढ़ चुके हूँ।
1: नहीं मतलब उतना ये नहीं हुआ, फिर हम भी ऐसे लोकल इस्ते आते थे ना, तो फिर ऐसे उस टाइम में थोड़ा ऐसे ये ऐसे बड़े बड़े सिटी हमको भी थोड़ा ये लगता था ना, घबराहट होती थी वहाँ पे जाने का, तो फिर वो ऐसे ऐसा लगता था हाँ ये भी सही बोल रहे हैं ऐसा लगता था फिर।
0: अच्छा अच्छा, तो आसमा जी अभी अभी जो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ये जॉब आपको कब लग गया फिर?
1: ये जॉब 2024 में
0: 2024 में लग गया। अच्छा, तो तब तक आपने क्या किया फिर?
1: जैसे कि आपने ना, हाँ मैं भी नवोदय विद्यालय में FCSA करके थी।
0: अच्छा, हाँ
1: जालना स्कूल जालना का नवोदय है ना, तो वहाँ पे मैं भी कंप्यूटर टीचर बोल के थी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये अभी 2024 तक बीच में आपने कहा आपकी शादी भी हो गई, तो वो कैसे हो गए वो भी बोलिए।
1: हाँ मतलब मेरे पप्पा ना थे ऐसे कोरोना में वो एक्सपायर हो गए थे, तो फिर बाद में से ऐसे उनके जाने के बाद ऐसे तब तक ऐसे शादी नहीं हो गई थी, फिर उनके जाने के बाद तो फिर तब शादी हो गई, फिर वहाँ पे जाने के बाद फिर वहाँ के कॉलेज में और ऐसे पढ़ाई किया है इतना अच्छा, तो पप्पा ने पढ़ाई से कुछ तो करना है बोल के फिर वहाँ के कॉलेज में इंटरव्यू दिए, क्या ये एड निकली थी सो फिर सिलेक्शन हुआ इंटरव्यू में वहाँ।
0: अच्छा, तो आपके जो हस्बैंड है ससुराल वाले है उन्होंने सब आपको सपोर्ट किया?
1: हाँ बहुत अच्छे हैं वो, सब ये ऑल एजुकेटेड हैं वो लोग।
0: अच्छा, तो इसके वजह से आपको सपोर्ट किया, तो ठीक है समझो। अभी आपकी जर्नी जहाँ तक आप देखा जाए 2026 चल रहा है, आपकी पढ़ाई होके भी लगभग अब 10 साल हो रहे हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक और सब कुछ देखा जाए तो इंजीनियरिंग कंप्लीट होके भी, तो आप क्या सोच रहे हो कि आगे ऐसे और कैसे बढ़ना है, क्या करना है आगे चल के?
1: मतलब ऐसे कुछ तो ऐसा इतने टेक्नोलॉजी यूज ऐसे है तो फिर हमारे को भी नॉलेज है, तो ऐसे कुछ तो अभी जॉब के ऐसा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो हम और भी तो उसके साथ साथ तो कुछ भी ऐसा इन्वेंट भी कर सकते हैं इतना, मतलब आजकल तो सभी इजीली मिलता है, तो ऐसे कुछ तो अलग भी कर सकते हैं, तो ऐसा। अच्छा।
0: तो जैसे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बोल के आप खुश हो, या आजकल तो वर्क फ्रॉम होम का भी बहुत मतलब ये जमाना ही चल रहा है, तो आपने ऐसा कभी ट्राई नहीं किया कि वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो? आपको जितना इतना नॉलेज मिला हुआ है कंप्यूटर साइंस के अंदर तो आप उसको आगे बढ़ा सकते हो, ऐसा कुछ मतलब सोचा नहीं आपने?
1: हाँ नहीं मतलब वो फर्स्ट जॉब मैंने एज अ टीचर बोल के की थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि टीचर बोल के करना थोड़ा
0: इजी है। अच्छा,
1: मतलब हम अपने फैमिली के साथ भी रह सकते हैं।
0: अच्छा, और ज्यादा बर्डन
1: फैमिली को भी ऐसा टाइम दे सकते हैं और खुद को खुद भी ऐसा आगे बढ़ सकते हैं। तो फैमिली भी साथ होना जरूरी है आजकल के जमाने में, तो कब क्या होगा पता नहीं।
0: अच्छा अच्छा, तर मित्रों अपन जी चर्चा करत आहोत आसमा युनूस सय्यद यांच्याशी, त्या 2020 MECSE मधून पासआउट आहेत, 2019 BE कंप्लीट केलंय, त्याच्या अगोदर पॉलिटेक्निक केलंय, सध्या सोलापूर येथील इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये ते असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून कार्यरत आहेत। तो आसमा जी ये बात और एक मुझे पूछनी थी कि जैसे ठीक है आप असिस्टंट प्रोफेसर हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो ये कितना इजी होता है? आमतौर पे मैं क्या पूछता हूँ हमेशा, कोई लड़की अगर यहाँ पे आ रही, उसका इंजीनियरिंग हो चुका है, तो एक लड़की बोल के, क्योंकि यहाँ का जो हम जैसे देखते हैं कि धाराशिव हो, लातूर हो, वैसे भी देखा जाए तो मराठवाड़ा का रीजन वैसे ऐसा कहते हैं कि मागस लेला है वो, तो ऐसा कितना लड़कियों को कितना आसान होता है पढ़ना और नहीं पढ़ना ऐसा लगता है? ठीक है, आपके पिताजी पढ़े लिखे थे, उन्होंने आपको इनकरेज किया पढ़ने के लिए, आपके पूरे फैमिली को किया इनकरेज, तो कितना आसान और कितना हार्ड है कि भाई इसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? जैसे आप उजनी में भी 10th तक पढ़ाई की हो, बाकी तो आपको क्या लगता है? जैसे आपके बहुत सारे लड़कियां फ्रेंड होंगे तो आप शायद डिस्कशन होता होगा कि बहुत हार्ड है या इजी है, कैसा लगता है?
1: नहीं मतलब जब पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं तो तब इजी होता है।
0: अच्छा, और पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते तो?
1: हाँ, तो फिर तो थोड़ा हार्ड होता है मतलब।
0: अच्छा, और जैसे कि ये पूछना कितना लाजमी है मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कितना इजी है और कितना हार्ड है?
1: हाँ नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी भी में भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि नहीं अपनी बेटी पढ़नी चाहिए, मतलब एज अ ग्रेजुएशन तो भी होना चाहिए अपने ऐसे मतलब लाइफ में, ऐसा जॉब के लिए पढ़ाई नहीं तो फिर हम समझदार भी बहुत होते हैं पढ़ाई से, मतलब हम और ऐसे लगता है कि जब कोई आर्गुमेंट और हो रही होती तो हम बोलते हैं हाँ जान दो, मतलब ऐसे ये नहीं होना चाहिए कलेश और ऐसे, थोड़ा हम ही कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हाँ। तो पढ़ाई सिर्फ जॉब के लिए काम नहीं आती, तो जब हमारे मेंटालिटी के लिए भी बहुत काम आती है, मतलब हम ऐसे थोड़ा सा ऐसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ये होता है।
0: जैसे कि आपने आसमा कहा था कि पॉलिटेक्निक करने के बाद आप यहाँ पे इंजीनियरिंग आ गई थी, तो आपने बोला कि यार लाइफ भी देखनी चाहिए, फ्रेंड्स भी करने चाहिए, थोड़ा सा मतलब मौज मजा भी करनी चाहिए, ऐसा आपने कहा था। तो उस टाइम तो इतना ज्यादा सोशल मीडिया का, मोबाइल का उतना ज्यादा नहीं था 2013-16 में, मतलब इतना सोशल मीडिया का नहीं था, मोबाइल तो आ चुका था खैर, लेकिन सोशल मीडिया का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं था समझो। तो आप इसको कैसे देखती हो, सोशल मीडिया के थ्रू होने वाली फ्रेंडशिप और आपके मतलब आप जब यहाँ कॉलेज में थी फ्रेंडशिप, तो उसमें कुछ ऐसा लगता है आपको अलग अलग कुछ है?
1: हाँ बहुत ज्यादा अलग है, मतलब जब हम ऐसे कॉलेज में रहते ना तो तब ऐसे वो हमारी फ्रेंड, अब हम जिधर जा रहे हो उधर जाने का ऐसे जो हमारे ऐसे सब साथ में,
0: हाँ
1: बात दूसरे से ऐसे सब, मतलब अब फोन पे बात और ऐसे उस टाइप,
0: यानी आप आर्टिफिशियल ज्यादा हो गए, उस टाइम रियलिटी ज्यादा थी कि एक दूसरे के साथ।
1: तो हम किधर होंगे ऐसे, सपोज कुछ होगा अपना तो हम हैं तो अपना फ्रेंड नहीं हम भी रुकते तुम्हारे साथ और ऐसे टाइप में, और किधर जाना होगा घूमने तो सब फ्रेंड हाँ हम चलेंगे साथ में बोल के, तब वैसे वो जो हर एक इसमें जो हमारे फ्रेंड साथ रहते थे ना, किधर कुछ देखने जाना है उधर ऐसे कुछ
0: तो
1: घूमने
0: सब साथ में। और जो जहाँ तक कि सुख दुख की बात हो तो सब देख के पहचान में आता था कि ऐसा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता ऐसा आपको लगता है? आप भी खुद इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाती हो तो आजकल के बच्चों को देखती हो ऐसा आपकी, अरे वो फ्रेंडशिप की वो बात नहीं रहेगी जो समझो कुछ पिछले जमाने में?
1: तो अभी क्या वो ऐसे वो किधर गए ना, वही मतलब स्नैपचैट है वो, मतलब सिर्फ फोटो स्टेटस पे लगाना
0: ज्यादा,
1: तो वो ज्यादा तो उनका दिमाग ऐसे जब हम थे तो ऐसा ज्यादा ऐसे बातों से शेयर करते थे, अभी क्या नहीं मतलब अभी तो ऐसा ज्यादा तो स्टेटस है वो उस पे ध्यान रहता है, उतना ज्यादा कौन किसी बात भी नहीं करता।
0: अच्छा अच्छा, तो आसमा देखिए आपने कहा कि आपको फैमिली को प्रायोरिटी देनी है, तो आपने लेक्चरशिप चुनी जिसके वजह से आप फैमिली के साथ भी रह सकती हो और आपने एक मतलब एक आप जॉब भी कर सकती हो, तो सिर्फ यहाँ तक है या आगे आपने कुछ सोचा है कि नहीं मुझे आगे जाके कुछ और करना है, कुछ ऐसा कुछ सोचा है क्या, बस यही इतनी जर्नी जो है ऐसे ही चलनी है?
1: नहीं मतलब ऐसे मुझे ऐसे लगता कि नहीं अभी अच्छे से पढ़ाई करके PhD करके असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब JRF और ऐसे लेना है और ऐसे बेस्ट टीचर बनना है, मतलब हमें हम जब कॉलेज में रहते थे तो जो हमारे को जो कमी लगती थी ना हमारे टीचिंग में, जो हमें को ये नहीं मिल रहा, तो वो इम्प्रूवमेंट करना है खुद में भी, तो हम वो स्टूडेंट को दे सके ऐसा।
0: अच्छा, तो आपने आपके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट की है कि जैसे कि आपने पॉलिटेक्निक करते टाइम जो कंप्यूटर साइंस के मतलब जो सिलेबस था, बाद में इंजीनियरिंग के टाइम, बाद में एम ई के टाइम, और आप जो सिलेबस है उसमें कुछ चेंज है, उसके हिसाब से आपने अपग्रेडेशन किया, क्या क्या क्या हो गया?
1: नहीं तो पहले तो मतलब उतना कुछ ये नहीं होता था कि हाँ हमको सिलेबस रहता था तो वो सिलेबस की बुक्स लाना और पूरा ऐसे रीड करते थे हम ऐसे पूरे रहता था। फिर बाद में पूरे आप उतना अब हमारे को ऐसे नहीं पता रहता था कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो, मतलब हम पूरा पूरा वक्त उसे ही देते थे, वो कम्प्लीट करना है पूरा सिलेबस कम्प्लीट करना है बोल के। और जब हम ऐसे BA में आ गए तो फिर हमारे को पता लगने लगा कि हाँ नहीं तो उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि टॉपिक होते हैं कि वो नहीं भी करे तो चलता है और ऐसे, तो जो प्रायोरिटीज और है ना तो मतलब ऐसे थोड़े थोड़े ऐसे समराइजेशन हुआ ऐसे इसमें
0: अच्छा।
1: पढ़ाई
0: लेकिन आपने अपग्रेडेशन किया उसके हाँ। साथ अच्छा अच्छा तो ये तो होगा सब आपके कॉलेज की जर्नी, आपने कैसे पढ़ाई की या लड़कियों को आमतौर पे स्ट्रगल करना पड़ता है अगर पेरेंट्स का सपोर्ट हो तो आगे बढ़ सकती है ऐसा बयान का, तो सिर्फ इतना ही है क्या आप मतलब जैसे आपने कहा कि टेंथ तक भी आप अच्छी स्टूडेंट थी, पॉलिटेक्निक में भी इंजीनियरिंग में भी टॉपर रह चुकी हो, तो ऐसे ही था क्या बाकी भी सब बहुत धिंगा मस्ती ऐसा चलता था ऐसा कुछ जो बोलते ना खोड़कर मुल गया ऐसा कुछ था?
1: नहीं वैसे नहीं थे हम मतलब ऐसे फ्रेंड्स में और बातें करते थे मतलब ऐसे नहीं थे उतने भी ज्यादा।
0: अच्छा और बाकी हॉबीज यानी जैसे कि किसी को गाना गाने की हॉबीज रहती है, किसी को क्या रहता है क्या रहता है, आपको ऐसा कुछ है?
1: हाँ रीडिंग ही थी।
0: रीडिंग ही थी अच्छा, अरे वो भी पढ़ाई के हिसाब से ही हो गया, दूसरा कुछ ऐसा मूवीज देखना ऐसा कुछ वैसा?
1: हाँ मतलब है सुनना है गाने सुनना और ऐसे
0: गाने सुनना ही ज्यादा था सॉन्ग सुनना। अच्छा और मूवी देखी नहीं कभी आपने?
1: हाँ मूवी भी देखते ना
0: कॉलेज में जब थे, कौन सी मूवीज देखते थे?
1: ऐसे साउथ की मूवी देखते थे ज्यादा।
0: साउथ की मूवी
1: हाँ।
0: और कहाँ पे देखते थे?
1: ऐसे
0: लैपटॉप में,
1: लैपटॉप में हाँ लैपटॉप में। एक्चुअली हम हॉस्टल पे रहते थे, जब एक मूवी किसके पास आई ना पेन ड्राइव में हाँ, तो सब सर्कुलेट हो जाती थी हमारे हॉस्टल में, कौन सी नवी मूवी किसने लाई ना हाँ। तो सब कैसे लैपटॉप में पेन ड्राइव से हम ले लेते थे और सब हॉस्टल में बहुत इंजॉय करते थे उसे लेके। अच्छा। तो मूवी हमारे पास आ ही जाती थी न्यू जो निकली ना हाँ। तो लैपटॉप तो कंपलसरी रहते थे सबके पास, तो उस पे देखते थे हम।
0: और ऐसे कभी थिएटर में वगैरह जाके? यहाँ तो खैर
1: टाइम में तो नहीं देखे
0: हाँ।
1: तो पर ऐसे देखते थे नॉर्मली कब ऐसे छुट्टियों में और कई बात नहीं।
0: अच्छा, और गाने कौन से सुनते थे?
1: मतलब वो इसके हिसाब से जब कुछ असाइनमेंट लिखनी होगी तो उसके हिसाब से।
0: फिर भी कौन से हिंदी?
1: हिंदी।
0: और कौन से पुराने नए कौन से?
1: 90s के
0: ज्यादा गाने सुनते थे। अच्छा यानी 2014-15-16 में भी 90s के। अच्छा और कौन से गाने ज्यादा आपको पसंद आते थे 90s के भी?
1: मतलब ऐसे
0: आप कौन सा याद आ रहा है कि जो आप असाइनमेंट लिखते टाइम शायद गाने सुनती होगी या कोई मूवी में देखा होगा, जैसे आपने कॉलेज में यहाँ पे आए तो आपको उधर ऐसे जैसे आपने सर घुमाया उधर लेडीज हॉस्टल है तो गर्ल्स हॉस्टल की तरफ देखते ही आपको याद आ गया कि मैं यहाँ पे गाने सुनती थी ऐसा कुछ, या जैसे आप यहाँ से आते होगी कैंटीन दिखा होगा ये कैंपस में आए होंगे तो दिमाग में गाना चलता होगा कि यार उस टाइम में ये सुनती थी, कौन सा ऐसा गाना था?
1: हम वो सुनते थे मतलब वो रंग मूवी में का वो तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है।
0: अच्छा और दूसरे कौन से गाने?
1: और अभी ऐसे अभी भी लेटेस्ट भी सुनते थे बेफिक्रे मूवी में का और ऐसे।
0: हाँ अच्छा अच्छा लेकिन ये गाना आपके पहले दिमाग में आएगा तुझे ना देखूं तो
1: जब हम टेंथ में भी रहते थे ना तो और जब ऐसे कुछ पढ़ाई करते थे रेडियो पे और वही गाने चलते थे तो वो ऐसे वो गाने ऐसा रिमाइंड होते वो दिल में याद आते कि हाँ हम टेंथ में याद दिलाते वो हमारा मतलब ईयर्स याद दिलाते तब ये सुनते थे बोल कैसे।
0: तो देखिए आसमा आपके 5 बहनें हैं, आज आपके साथ आयशा भी आ चुकी है जो कि अभी नवोदय स्कूल में एज ए टीचर के तौर पे जॉब कर रही है या फिर वो सब कुछ देख रहे, तो अभी तक की जर्नी में आपको क्या लगता है कि एज एक लड़की के सोच पे यानी एक आप एक लड़की भी हो साथ में एक मुस्लिम कम्युनिटी से भी हो जहाँ पे बहुत सारा ऐसा कहता है कि बहुत सारे बंधन रहते हैं या कुछ ऐसा रहता है, उसके में भी आप पढ़ाई करके आपके पिताजी ने आपको बहुत मतलब सपोर्ट किया आपके पूरे फैमिली को इसलिए आपके सभी बहनें भी पढ़ चुकी है, तो सब आपको क्या लगता है पूरे जर्नी का अगर आपको एक 2-3 लाइनों में अगर आपको ये करना है उसको एक्सप्रेशन देना है उसको तो कैसे आप उसको एक्सप्रेस करोगे?
1: मतलब मतलब ये तो थे हम तो मतलब हमारे पापा ने बहुत इनकरेज किया है।
0: अच्छा।
1: तो ऐसे बोलते थे कि मतलब तुम लाइफ में बहुत कामयाब हो तो पढ़ाई जॉब के लिए मत करो, सिर्फ कामयाब होने के लिए करो। तो पर कुछ परेशानी आ गई तो पढ़ाई सिर्फ तुम्हारे को सोल्यूशन बोल के आनी चाहिए और ऐसे।
0: अच्छा। और अंबिका तो आपने नाम भी नहीं लिया तो शायद उन्होंने कुछ तो बोला होगा कि अरे छोड़ पढ़ाई बिढ़ाई क्या करने से, खाना बीना पकाने को सीख लो, वही काम में आने वाला, ऐसा कुछ
1: नहीं। मतलब मेरे पापा मेरे मम्मी और पापा बहुत ऐसे एक रहते थे।
0: अच्छा।
1: तो हमारी मम्मी भी बोलती थी कि नहीं पढ़ाई करो।
0: अच्छा।
1: ऐसे इतना पापा पढ़ा रहे तुमको इतना मेहनत से तो अच्छा पढ़ो। तो मेरी मम्मी भी बहुत सपोर्टिंग थे। जब ऐसे हमारे को कुछ ऐसे बाहर जाना होता था ऐसे मतलब पढ़ने के लिए ऐसे हैदराबाद इधर उधर, तो तब हम ऐसे मम्मी को बोलते थे, पहले मम्मी को बोलते थे कि मम्मी उधर जाना है, तो फिर मम्मी भी ऐसा हाँ पापा को फिर बोलते थे कि हाँ, फिर पापा फिर दोनों मिलके डिसीजन लेते थे।
0: अच्छा अच्छा। तो आपके फैमिली में पूरा पूरा के पूरा तरीके से सपोर्ट था। तो फिर ठीक है, एज आसमा जी आप देखिए, आपने इतनी पढ़ाई कर चुके हो, आप पॉलिटेक्निक से लेके एमई तक और साथ में आज लेक्चरर भी हो, तो आप क्या कहना चाहोगी उन सारी लड़कियों को जो आज पढ़ाई कर रही है, अलग अलग ब्रांचेस में कर रही है, वो बात अलग है, लेकिन जो ऐसे बहुत सारे रूरल ग्रामीण भाग से भी आती है, बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटी से भी लड़कियां यहाँ पे पढ़ने आती है, तो सबको मिला जुला के आप क्या कहना चाहोगे कि आगे किस तरीके से बढ़ना चाहिए, फैमिली वैल्यूज को भी कैसे पकड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप एंड में क्या कहना चाहोगी?
1: मतलब ना पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, मतलब पढ़ाई से हमारी खुद की भी वैल्यू बहुत बढ़ती है। जब मतलब हम जब लाइफ में कुछ जॉब और ऐसे करते हैं तो हर एक जने रिस्पेक्टफुली देखता है हमको। तो और ऐसे और समझदारी के लिए मतलब वो भी सपोर्ट तब जब हम मैरिड होते हैं तो तब भी पढ़ाई हमें बहुत हौसला देती है।
0: अच्छा।
1: मतलब ऐसे कुछ ऐसा प्रॉब्लम भी आ रहे तो नहीं हमारे को लगता हाँ नहीं हम पढ़े सो हैं, हम कुछ भी हुआ तो हम कर सकते हैं, जो आप खुद खड़े हो सकते हैं ऐसे नहीं। अच्छा। तो आजकल क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम भी आ गए ना ऐसे मैरिड लाइफ में और तो बहुत सारी लड़कियां ऐसे घबराते हैं, अब यहाँ से जाने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे को सपोर्टिंग नहीं है, हम ये लात के देते हैं तभी हम डिपेंड हैं, तो हम ये छोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, मतलब वो सहन करते हैं बहुत कुछ ऐसा। तो जब हम पढ़ाई करते तो ना हमारे को हम भी सहन करते हैं पर हमारे को थोड़ा इतना रहता है कि दिल में नहीं ये तो मतलब एक लेवल तक सहन करते हैं, बाद में से ऐसे लगता है कि नहीं हमारे पर पढ़ाई भी है, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं और जीने के लिए उतना तो कर सकते हैं पढ़ाई से।
0: अच्छा।
1: तो पढ़ाई बहुत जरूरी है।
0: अच्छा।
1: तो एक कॉन्फिडेंस दिलाती है हमको भी कि ऐसा हारना नहीं है लाइफ में।
0: यस। तो आसमा बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करते हुए कि आपने पूरी आपकी ये जो जर्नी है ये पढ़ाई से लेके अब तक की वो बोल दिया, और जितना फैमिली वैल्यूज के बारे में आपने बहुत ज्यादा उसको जोर दिया उसके ऊपर कि उसको बहुत ज्यादा आगे लेके जाना चाहिए, तो वो भी हमको बहुत बढ़िया लगा। तो आखिर में वही गाना सुनाए जो आपने कहा था कि तुझे ना देखूं दे, या कोई और गाना आप चाहेंगे कि वो ये मुलाकात के एंड में हम सुनाते हैं लोगों को, तो कौन सा ऐसा गाना, क्या वही गाना सुनाना है या कोई अलग है गाना? और
1: नहीं अरिजीत सिंह का कोई भी।
0: अरिजीत सिंह का, अच्छा थोड़ा सा भी चेंज हो गया, अरिजीत सिंह का कौन सा ऐसा गाना?
1: आशिकी में का,
0: आशिकी में का, यानी आशिकी टू में का ना गाना वो।
1: अच्छा, आशिकी टू में का।
0: अच्छा ठीक है, तो वो भी गाना सुनवाएंगे, और आप यहाँ पे आई इसलिए हम बहुत मतलब रेडियो तैरना टीम की वजह से, और रेडियो तैरना टीम रेडियो के बारे में आपने कुछ कहा भी नहीं क्योंकि रेडियो तैरना तो स्टार्ट हो गया, वैसे तो आप 2020 में, उससे पहले बहुत काफी पास आउट हो गई थी, लेकिन 2021 से रेडियो तैरना भी स्टार्ट है, तो आपको कैसा लगा कॉलेज में आने के बाद रेडियो देखने के बाद कैसा लगा?
1: मुझे अभी पता चला कि ये हमारे कॉलेज का भी एक रेडियो स्टेशन बना है, तो मुझे बहुत खुशी हो गई कि मतलब जब हम ऐसे छोटे थे ना तो हम बहुत ऐसे ऐसे ध्यान लगा के रेडियो सुनते थे।
0: हाँ,
1: और आप भी हमारे को तब जब हम रहते थे ना 7th 8th में तो हम आपकी आवाज ऐसे कितने प्यारी आवाज है ऐसे लगता था, मुझे आप बहुत ज्यादा खुशी हो रही कि आप आपको देखा है सामने।
0: अच्छा, आकाशवाणी में मित्रों मी जेव्हा आकाशवाणीत होतो त्यावेळेस आसमा आणि त्यांच्या घरचे सगळेजण रेडिओ ऐकायचे, आणि त्यावेळेसपासून ते खरं तर खूप म्हणजे चाहते आहे त्याबद्दल, वैसे तो मैं आपका भी शुक्रिया करना चाहूंगा, और खास तौर पे आपके पिताजी का, हालांकि वो अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा हमको मतलब प्यार भी किया, ऐसा आपने कहा कि रेडियो के जरिए प्रोग्राम सुनते हुए। फिर भी मैं आपको बहुत मतलब मैं आपको विशेष देना चाहूंगा कि आप आगे बढ़ते रहो, आपकी PhD कंप्लीट करो और असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके आप प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो बनना चाहोगी आप तो आप प्रिंसिपल भी बने, या मैं आपको वैसे तो, और आपके साथ आपकी बहन आयशा भी आई है तो मैं आपका भी शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आणि आपण ऐकत राहा रेडिओ तरुण 90.4 FM, आपली माणसं आपलावर श्रोते, रेडिओ तरुण ट्यून करा 90.4 FM, किंवा आपण अँड्रॉइड फोन किंवा ॲपल फोन वापरत असाल तर गुगल प्ले स्टोअर किंवा ॲप स्टोअरवर रेडिओ तरुण हे ॲप उपलब्ध आहे। आपण रेडिओ गार्डनवरही रेडिओ तरुण ऐकू शकता, त्यासाठी पृथ्वीच्या ग्लोबवरील उस्मानावरला जर टच केलं तर आपल्याला ऐकायला येईल केवळ रेडिओ तरुण। आपण http://radio.co.uk/usmanabad.ac.in या वेबसाईटला भेट देऊन ऐकू शकता रेडिओ तरुण। आपण आमच्या फेसबुक पेज आणि इंस्टाला लाईक करा, फॉलो करा, तसेच आपल्याला हा कार्यक्रम कसा वाटला ते जरूर कळवा, त्यासाठी व्हॉट्सअप क्रमांक आहे 9970 500 9970 500 900। ऐकत राहा, आनंदी राहा, रेडिओ तरुण 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: गाओ ना गीता, अब तो गाना आता है तुम्हें?
1: मुझे नहीं आता।
2: नहीं मिलना भैया, आजकल तो गीता दीदी खूब गाती है।
3: हाँ हाँ गाइए ना।

0: सर, इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: That's the spirit, sir.

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बार एक बार लेकिन एक बार

0: अच्छी है, न जाने क्या बात है उनमें, वो जब भी मेरी तरफ देखती है मुझे कुछ हो जाता है।
1: और जब मैं देखती हूँ?
0: अरे जब तुम देखती हो तो गजब हो जाता, होश उड़ जाते हैं, दिल पे काबू नहीं रहता, छुट्टी हो जाती छुट्टी।
1: अच्छा, सिर्फ देखने में इतना असर?
0: अरे सिर्फ देखने से नहीं, प्यार से देखने से। और फिर प्यार चीज ही ऐसी है, अरे लोग तो पागल हो जाते हैं पागल।
1: आप भी होने वाले हैं सर?
0: हाँ हो जाता अगर तुम मुझसे प्यार न करती।
1: ये किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ?
0: व्हाट, अभी तक नहीं कहा?
1: जी नहीं।
0: तो फिर फौरन इसी वक्त एडवांस कहो।
1: नहीं,
0: मैं भी कलवा के छोड़ूंगा।
1: कभी नहीं।
0: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
1: डन
0: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है?
1: क्या?
0: मैंने पूछा बागों में बाहर है?
1: है।
0: गलियों की निहार है?
1: हाँ है।
0: तो तुमको मुझसे प्यार है?
1: ना, ना, ना।

0: प्यार है,
1: अरे बाबा है,
0: तुमको मुझसे प्यार है।
1: ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना।
2: देखा ना, देखा ना, मैंने कल वाक छोड़ा।
3: आपली पसंत, आमची आवड, मनस्वी संगीत, शेती, महिला आरोग्य, विशेष कार्यक्रमांचा नजराणा, आपला रेडिओ तेरणा। ऐकत रहा, आनंदी रहा। रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज। क्रिस्टल क्लिअर आवाजासाठी डाउनलोड करा आमचा ऍप प्ले स्टोर वरून। टाइप करा रेडिओ तेरणा 90.4। रेडिओ तेरणा आता रेडिओ गार्डन वरही उपलब्ध, तसेच radio.coe usmanabad.ac.in वेबसाइट टाकूनही आपण रेडिओ तेरणा ऐकू शकता। ऐकत रहा रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज। ऐकत रहा, आनंदी रहा।